एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, सक्षम 1948 की आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं खेती के बातें, कीटनाशी छिड़काव से सावधानियां, प्रतिमा वर्मा से।

भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बातें कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियों की। किसान भाइयों, कीटनाशकों के खेतों में प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जी हाँ किसान भाइयों, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के समय अगर सावधानी ना बरती गई तो किसानों की जान तक जा सकती है। ऐसे में किसान कुछ सावधानी बरतकर बचाव कर सकते हैं, जरा सी असावधानी खतरनाक साबित हो सकती है। कीटनाशक रासायनिक और विषैले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कीटनाशक का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि उपकरण में लीकेज तो नहीं है। कभी भी कीटनाशक उपकरण पर मुंह लगाकर घोल खींचने का प्रयास ना करें। तरल कीटनाशकों को सावधानी पूर्वक उपकरण में डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर के किसी अंग में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो तुरंत साफ पानी से कई बार धोना चाहिए। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयुक्त समय सुबह या सायंकाल होता है। इनका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि आसपास हवा तेज गति से न चल रही हो। जब आप कीटनाशक को खेत में छिड़काव करने के लिए तैयार कर रहे हो तो उसमें साफ पानी का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने हाथ, नाक, आंखें, कान और मुंह को ढक लें। सिर को भी ढक लें। हाथों को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग से बने दस्ताने पहने। सिर को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करें। सिर को कैप या तौली से ढकें और चेहरे को रुमाल, साफ कपड़े या मास्क से ढकें। छिड़काव का घोल तैयार करने से पहले कंटेनर के ऊपर जो लेबल लगा हो उसे पढ़ लें। उसमें घोल तैयार करने का तरीका लिखा होता है। सांद्रित कीटनाशक को खोलते समय विशेष सावधानी रखें कि वो आपके हाथ पर ना गिरे। स्प्रेयर टैंक को कभी न सूंघें। स्प्रेयर टैंक को भरते समय ध्यान रखें कि कीटनाशक जमीन पर ना फैले। स्प्रेयर तैयार करते समय खाना पीना वर्जित होता है। उपकरण लीक करने वाला या कहीं से भी खराब उपकरण को छिड़काव करने के लिए प्रयोग में ना लें। नोजल सही होनी चाहिए। कभी भी नोजल को मुंह से फूंक कर साफ ना करें। इसके लिए स्प्रे से बंधे पुराने टूथब्रश का उपयोग करें और पानी से साफ करें। घास फूस नाशक और कीटनाशक को कभी भी एक स्प्रेयर से छिड़काव ना करें। खाली कीटनाशक कंटेनर को किसी भी दूसरे काम में इस्तेमाल ना करें। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताई गई या कीटनाशक के कंटेनर पर लिखी मात्रा में ही छिड़काव करें। बहुत गर्म दिन में या जिस दिन तेज हवा चल रही हो कीटनाशक का छिड़काव ना करें। हमेशा हवा के 90 डिग्री कोण पर छिड़काव करें। जब बारिश होने वाली हो तब या बारिश होने के तुरंत बाद छिड़काव ना करें। हवा के बहाव की विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें। नोजल की ऊंचाई करीब 1.5 फुट रखें और इधर उधर ना घुमाएं। किसान भाइयों, कीटनाशक का घोल बनाते समय जिस

0: कंटेनर या बाल्टी का इस्तेमाल करें, उसे दोबारा कभी किसी घरेलू काम में उपयोग में ना लाएं। कीटनाशक के छिड़काव के बाद जानवरों या किसी भी व्यक्ति को खेत में ना जाने दें। कभी भी खाली पेट छिड़काव ना करें। कीटनाशक तैयार करते समय शरीर को जिस तरह ढका था उसी तरह उसका छिड़काव करते समय भी ढक लें। छिड़काव के बाद सारे कपड़े गर्म पानी में साबुन से धोएं और साबुन से स्नान भी कर लें। कीटनाशी का छिड़काव करने के बाद बचे हुए कीटनाशक को कभी भी किसी तालाब, कुएं या किसी भी पानी के स्रोत में ना बहाएं, बल्कि कोशिश करें कि इसे ऐसी बंजर जमीन पर फेंकें जहां किसी का आना जाना ना हो। खाली कंटेनर को किसी पत्थर से तोड़कर उसे पानी से दूर कहीं जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। स्प्रेयर और बाल्टी को इस्तेमाल करने के बाद साबुन से 4 से 5 बार धोएं। किसान भाइयों, घर में कीटनाशक कभी भी ना रखें। इसके असली कंटेनर में ही इसे रखें और कंटेनर को ठीक से बंद करें। दूसरे कंटेनर में कीटनाशक ना डालें। कीटनाशक को ऐसी जगह ना रखें जहां खाना या चारा रखा हो। पानी और सूरज की रोशनी की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशक और घास फूस नाशक को एक साथ ना रखें। किसान भाइयों, ये हुई बातें कीटनाशकों के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों की। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
2: एपिसोड 184

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाएं। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आज सुनते हैं चिंतन, परोपकार, आलेख एवं वाचन स्मृति लाल की है।

हमारी भारतीय संस्कृति की भावना का मूलाधार परोपकार है। दया, प्रेम, अनुराग, सहानुभूति के मूल में परोपकार की ही भावना है। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित यानी परोपकार के समान धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा अधर्म नहीं। परोपकार ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग है। प्रकृति से हम सीख सकते हैं जो निरंतर प्राणियों के हित साधन में जुटी रहती है निस्वार्थ भाव से। सूर्य, चंद्रमा, नदियां, वृक्ष, बादल, वायु हमें ये सिर्फ देते ही हैं। इनसे ही हमारा जीवन संचारित है और ये हमें यही संदेश देते हैं कि परोपकार एक आदर्श है, धर्म है जो मनुष्यता की ओर ले जाता है। परोपकार यानी पर उपकार, दूसरों के लिए सोचना, सहायता करना, सेवा करना, यह इंसान को महानता की ओर ले जाता है। हमारे देश में न जाने कितने महापुरुष हुए जिन्होंने दूसरों के लिए दीनहीनों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे सत्पुरुषों की कमी नहीं है। परोपकारी मानो संत के समान हैं। ये अपने लिए चिंता नहीं करते हैं बल्कि दीन दुखियों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और उन्हीं के लिए दिन रात चिंतन करते हैं। परोपकारी हृदय में कटुता नहीं होती है, किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या नहीं होती है। सारा संसार ही उनका घर होता है, परिवार होता है। ऐसे लोग दूसरों के हित के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मृत्यु के बाद भी परोपकार करते हैं, अपने अंगों का दान करके। परोपकार के कई स्वरूप हैं। छोटे छोटे कार्य करके भी हम परोपकार कर सकते हैं। रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान ये तो महान कार्य हैं, पर छोटी छोटी मदद से आत्मसंतुष्टि भी होती है और परोपकार भी। भूखे को भोजन कराना, असहायों की यथोचित मदद करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, जीव जंतु की रक्षा, दाने चारे की व्यवस्था, देखभाल, यह सब

मनुष्य जीवन को सार्थक बनाती है। व्यक्ति स्व की सीमित संकीर्ण भावनाओं की सीमा से निकलकर पर के उदात्त सतह पर खड़ा हो जन जन के कल्याण की ओर बढ़ता है तो उसका व्यक्तित्व निखरता है और यह भावना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वरना इससे परे तो वह पशुवत है। कवि मैत्री शरण गुप्त जी ने कितना सार्थक लिखा है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी सही बात कही है गुप्त जी ने। संसार के कितने ही महान कार्य परोपकार की भावना से ही संपन्न हुए हैं। महान देशभक्तों ने परोपकार की भावना से प्रेरित होकर ही अपने प्राणों का बलिदान दिया। अनेक संत महापुरुषों ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय में समर्पित कर दिया और यही भावना विश्व बंधुत्व के रूप में लोगों को एक सूत्र में बांधती है। परहित में ही सबका हित समाहित है, इसलिए हमें चिंतन की आवश्यकता है। मनन करना चाहिए, इस दिशा में चिंतन करना चाहिए। परोपकार से बड़ा धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने जैसा अधर्म नहीं।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आज सुनते हैं आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम तृप्ति शक्या की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता कृत्रिम दांत और देखभाल। भेंटवार्ता कारण डॉक्टर विष्णुपति सिंह रांची से।

0: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दांतों की समस्या से हर लोगों को गुजरना पड़ता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या हमारे वृद्धजन हों। किसी कारण से दांत सड़ जाती है और हमें दांतों को निकालना पड़ता है और इसके एवज में हमें नकली दांत, जिसे हम कृत्रिम दांत कहते हैं या आर्टिफिशियल टीथ कहते हैं, वो हमें लगानी पड़ती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि जो नकली दांत है या कृत्रिम दांत है किस तरह का होता है, उसकी देखरेख कैसे करें ताकि जो कृत्रिम दांत हैं उसकी उम्र लंबी हो और आपको किसी तरह की भविष्य में समस्या नहीं हो। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं रिम्स के सह प्राध्यापक दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णुपत सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, दांतों की समस्या हर लोगों को होती है, तो हम बात करें कृत्रिम दांतों की। तो कृत्रिम दांत कितने तरह की होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कृत्रिम दांत लगवाने के समय में?
1: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कृत्रिम दांत होते हैं या आर्टिफिशियल टीथ जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो मुख्यतः दो तरीके का बनाया जा सकता है। एक तो होता है फिक्स्ड दांत, जो कि आपके मुंह में बचे हुए दांतों से सपोर्ट ले करके जो प्रोस्थेसिस बनती है और जिसे हम अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते हैं, वो एक फिक्स्ड तरीके की विधि हो गई और फिक्स्ड प्रोस्थेसिस उसे बोलते हैं। और दूसरे तरीके का जो दांत का रिप्लेसमेंट होता है, कृत्रिम दांत जो बनते हैं, वो होता है एक रिमूवेबल मींस, मतलब उसको बनने के बाद पहनाया तो डॉक्टर के द्वारा ही जाता है लेकिन मरीज अपनी सुविधा के अनुसार उसे बाहर निकाल सकता है अपने मुख से और एक प्लास्टिक के बंद डब्बे में पानी में उसे रख सकता है। फिक्स्ड में ही दो तीन ऑप्शंस और होते हैं जो आजकल एक नया तरीका है दांतों को मुंह में फिक्स तरीके से लगाने का, उसको इम्प्लांट्स भी बोलते हैं। एक डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम का बना होता है जो हड्डी के अंदर हम उसे ड्रिल करके डालते हैं और उसके ऊपर हम आर्टिफिशियल टीथ बनाते हैं, तो ये भी एक फिक्स्ड उपाय है दांतों को रिप्लेस करने का।
0: किसी साथी की एक दांत खराब हो या उसकी पूरी दांत खराब हो गई हो तो वो कैसे देख रेख करे, क्या उपाय करें कि उसकी 32 दांत पूरी तरह से कृत्रिम रूप से लग जाए और उसकी देखरेख सही से करते रहे और उसका खान पान सही से होता रहे?
1: मुख्यतः हमें ध्यान ये देना है कि दांतों की परेशानी की जब शुरुआत हो तभी हमें सचेत हो जाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि शुरुआती दिनों में जब ये दर्द नहीं कर होता, दांत की दर्द से पाप परेशान नहीं होते हैं, मामूली सी कुछ दिक्कत होती है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं।

0: क्रिया का पूर्णतः इलाज आज संभव है। दांतों की साफ़ सफाई करने के बाद अब उसकी एडवांस सर्जरी भी होती है, और ये सब करके हम दांतों को बहुत अच्छा रख सकते हैं और उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। हमें तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमें कृत्रिम दांतों की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट, कभी भी जो नेचुरल टीथ हमें भगवान के द्वारा दिया गया है उसका रिप्लेसमेंट कभी नहीं कर सकता, वो
1: उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
0: नहीं कर सकता, वो उसके बहुत नज़दीक जाता है और उसके फंक्शंस, उसके एस्थेटिक और उसके बाकी सारे चीज़ों का वो रूप ले लेता है, बट हूबहू नेचुरल टीथ जैसा कुछ हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। तो हमें देख रेख तो बहुत अच्छे से करना चाहिए अपने नेचुरल दांतों का, और शुरुआती लक्षण दिखते ही दांतों में सड़न का, खानों का, खाने का फंसना या बदबू आना, ब्रश करते टाइम खून आना, तो हमें एक उपयुक्त डेंटिस्ट के पास जा कर के इसकी सलाह मशवरा करना चाहिए इससे संबंधित, और इसकी देख रेख करके हमें इसकी लाइफ को बढ़ा लेना चाहिए
1: जी।
0: ब्रशिंग हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए, ये बार बार बोला जाता है और लोगों को पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो रात का ब्रशिंग भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह का ब्रशिंग ज़रूरी है, क्योंकि रात को अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो क्या है, आप सो जाते हैं और लगभग 10-12 घंटे का समय आप मुंह के जो बैक्टीरिया हैं उनको देते हैं, खाने के ऊपर वो बैठते हैं, जो भी खाना दांतों में लगा हुआ है फिर वो एसिड प्रोड्यूस करता है और फिर वो दांतों में सड़न पैदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रात को ब्रश करें, दिन को तो करना आवश्यक है ही, बट रात को ब्रश करना उतना ही आवश्यक है। तो खाने के बाद जैसे थोड़ा सा कुल्ला कर लिया, क्योंकि एक अच्छी ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करने से निश्चित तौर पे ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके मुकाबले जो आप अगर अच्छी ब्रशिंग टेक्निक नहीं जानते हो और उस तरीके से ब्रश करते हो।
1: डॉक्टर साहब, हम थोड़ी खर्च की बात करें, कृत्रिम दांत हम लगवाते हैं चाहे एक हो चाहे पूरी दांत हम लगवाते हैं, तो खर्च कितना आता है और आपके यहाँ क्या व्यवस्था है इसकी?
0: मैं आपके रेडियो के माध्यम से सारे झारखंड वासियों को सूचित करना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्टोरोन्टिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं वो मुफ्त में बनते हैं और रिमूवेबल दांत की सुविधा अभी उपलब्ध है, और सबसे बड़ी बात है जो 32 बनती है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं किसी कारणवश जिनके मुंह में अब एक भी दांत नहीं है या 4-5 दांत बच गए हैं, वो हिलते डुलते अवस्था में हैं, उनसे वो अपने खान पान को सही ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, तो वैसे 4-5 दांतों को निकाल करके पूरी की पूरी 32 रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में बनती है और वो मुफ्त में बनती है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो कोई भी लोग जिनको ज़रूरत हो 32 बनाने की तो वो रिम्स में आए, 5 अपॉइंटमेंट विजिट होता है नकली दांत बनाने का, जो 32 बनती है वो 5 अपॉइंटमेंट में बनती है और एक एक दो दो दिन के अंतराल पे हम अपॉइंटमेंट देते हैं और लगभग 15-20 दिनों में आपको कृत्रिम दांत जो 32 है वो बन के तैयार हो जाती है। तो प्राइवेट में तो बहुत इसका कॉस्ट है, तो उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट ये मैं बताना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं, रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, या तो 32 हो या 5-7 दांत नहीं हो, 8 दांत नहीं हो, 10 दांत नहीं हो, बिल्कुल मुफ्त में बनता है और बहुत अच्छे क्वालिटी का बनता है, सक्षम डॉक्टरों के द्वारा बनाया जाता है जो विशेषज्ञ होते हैं इसी पर्टिकुलर फील्ड के, उसको हम प्रोस्टोडोंटिस्ट बोलते हैं। तो ये सुविधा तो रिम्स में अब उपलब्ध है।
1: तो दोस्तों, यदि दांतों की कोई भी समस्या हो तो चाहे आपको दांत नकली लगवानी हो, रिम्स में आप चले जाएं, बिल्कुल निशुल्क सेवा आपको दी जाएगी, एक पैसे भी नहीं लगेंगे, और यही सेवा आप यदि बाहर किसी निजी चिकित्सक के पास जाते हैं, निजी डिस्पेंसरी में जाते हैं, तो आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो इस सुविधा का लाभ उठाइए और डॉक्टर साहब मसूड़े चमकते रहे, मोती जैसे चमचम करते रहे आपके दांतें, क्या कहेंगे अपने सुनने वाले साथियों को?
0: दांत अगर आपके किसी कारण गिर गए हो तो तुरंत ही उसका रिप्लेसमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता बट धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा डाइट का रिप्लेसमेंट हो जाता है। बहुत कड़े चीज़ जो आप अपने नेचुरल टीथ से खा सकते थे, अब धीरे धीरे अगर आपके मुंह के अंदर दांत कम होने लगते हैं तो आप वो अपने पसंदीदा भोजन का सेवन नहीं कर पाते हैं और इससे फिर आपका स्वास्थ्य गिरने लगता है, और चूँकि ये सब इतना धीरे धीरे हो रहा होता है कि जब तक वो आपके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से परेशान करता है तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है, आपका वज़न घट जाता है और आप बहुत सारे

0: बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माउथ इज़ द मिरर ऑफ़ द होल बॉडी। कभी कभी हम मुंह के अंदर झांक के शरीर की भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग हैं, आपको जब भी कुछ ज़रूरत हो किसी तरीके की सेवा की तो आप रिम्स में आ सकते हैं, डेंटल में, और हर तरीके की सुविधा वहाँ पर आपको उपलब्ध है।
1: तो मित्रों, यदि आपके दांत मोती जैसे चमकते हैं, स्वस्थ हैं, तो यदि दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप खूबसूरत दिखेंगे, आपका चांद जैसा चेहरा दिखाएगा और आपका व्यक्तित्व भी उतना ही प्रभावशाली होगा। तो डॉक्टर विष्णुपति सिंह, सह प्राध्यापक रिम्स, आज आप इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में भेंटवार्ता, कृत्रिम दांत और देखभाल। भेंटवार्ता का आते डॉक्टर विष्णुपति सिंह रांची से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

0: ఉదయం ఆకాశవాణి సంప్రతి వార్తాః శ్రూయంతాం ప్రవాచిక సాధనా శర్మ. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति. कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पोताः आईएनएस दुनागिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः.
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है. इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है.
0: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिकवर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सवरूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्. तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्यकल्याणयोः समानलक्ष्ये संयोजयति. प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति. सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति. अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति पञ्चशताधिकाः व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति. भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति. अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति. नीट यूजी षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्र पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना. राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु चत्वारिंशत् अधिक चतुश्शतोत्तर पञ्चसहस्र परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्. दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेषव्यवस्थाः अपि कृताः. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वादश श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामः क्रमशः प्रकाशितः. मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु सप्ताशीत्यधिक शतं प्रतिशतं परिणामः घोषिताः सन्ति. अवशिष्ट परिणामः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते. छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति. मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्. छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः. तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः. सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः. घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति. राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितम् आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्. फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड मॉर्निंग। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुश्तबा। Prime Minister Narendra Modi says a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. In his address after commissioning three indigenously built naval ships in Kolkata, Mr. Modi said India does not want to remain only a buyer country in the defence sector, and the nation's armed forces cannot become just a market for the world. The Prime Minister commissioned indigenously built stealth frigate Dunagiri, survey vessel Sanshodhak and anti-submarine warfare shallow water craft Agra yesterday. Mr. Modi said India's journey from INS Vikrant to this date is not just about new warships but towards increasing self-reliance.
1: INS Vikrant se lekar aaj tak ki yatra keval naye yuddhapoton ki yatra nahi hai. Yeh Bharat ki बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
3: President Draupadi Murmu will visit Kuno National Park in Madhya Pradesh's Sherpur district today. During her visit, she will go on a safari in the park this morning and review the progress of the Cheetah Reintroduction Project. She will also interact with members of the Saharia tribe who work as Cheetah Mitras, Cheetah Trackers, local forest staff and tourist guides to learn about the experiences and role in the project. After the visit, the President will leave for Gwalior and later return to New Delhi. Prime Minister Narendra Modi launched India's ambitious Cheetah Reintroduction Project in 2022 by releasing 8 cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park on his birthday. Later, more cheetahs were brought from South Africa and Botswana. India will host a two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the gathering, which brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and UAE. The meeting will focus on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today, with discussion centered on the rapidly evolving nature of national security threats and the role of new technologies in emerging security risks. Delegates will also examine cybersecurity, digital vulnerabilities and artificial intelligence-driven threats. The National Testing Agency NTA will commence the UGC NET June 2026 examination from today. The national level eligibility test will be conducted in computer-based test mode until the 30th of this month in two shifts each day. The UGC NET exam is conducted for candidates aspiring to qualify for the Junior Research Fellowship or GRF, Assistant Professor positions and admission to PhD courses. The NTA has advised candidates to download their admit cards and carefully verify all exam details. CBSE has commenced the release of Class 12 verification of issues observed and re-evaluation outcomes. In a statement, it said that the outcomes are being released in a phased manner, with over 87% of the total applications received declared yesterday. The outcomes of the remaining applications will be made available in phases, and the entire process is expected to be completed soon. The status of application can be checked at results.digilocker.gov.in. On to sports now. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their final FIH Pro League match in Rotterdam yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए आपको बता दें, प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब से कुछ ही पलों में 7:15 पर आप सुनेंगे पलाश लोकगीतों का ये कार्यक्रम धर्मु नायकम साथियों के आवाज़ में। स्वर सरिता आप सुनेंगे रूप राठौर और सोनाली राठौर की आवाज़ में 7:45 पर। 8 का समय का समाचार प्रभात का। मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर रांची से। गीत गुंजन का समय होगा 8:45 पर। आप 9 सुनेंगे जोहार पलामू। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय होगा 9:30 पर हिंदी अंग्रेजी में। 10 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 10:05 पर। मुंबई आप सुनेंगे 10:10 पर विविध भारती उजाले उनकी यादों के। 11 आप सुनेंगे रंग तरंग। 12 यादों की महफिल। दोपहर 1 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। 1:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से। 2 आप सुनेंगे दिल्ली और मुंबई से अंग्रेजी में समाचार। हिंदी में समाचार का समय होगा 2:15 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में सदाबहार नगमे। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 2:55 पर। 3 आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सखी सहेली। 4 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। 4:02 पर हम चलेंगे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती में सेहतनामा। 5 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। 5:02 पर सुनेंगे विविध भारती में छाया गीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:35 पर सुनेंगे घर आंगन महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार 6:00, 6:02 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी। ग्रामीण सभा का समय होगा 6:30 पर, 6:55 पर आप सुनेंगे विज्ञापन। 7:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल, 7:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, 7:45 पर आप सुनेंगे कल्याणी कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य चर्चा जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता, अनिद्रा कारण एवं उपचार। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुंदरम श्री हर्षराज जी। चित्रपट आप सुनेंगे 8:00, 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9:00 दिल्ली से, 9:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से उर्दू में समाचार, 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के फनकार, 10:00 का समय होगा रजनीगंधा का, 11:00 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार, 11:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार, और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। तो ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश धर्मो नायकम साथियों की आवाज में।

0: ही सुनो सुनो।
1: अभी आप सुन रहे थे पल्ला श्लोक गीतों का कार्यक्रम नर्मु नायकम साथियों की आवाज़ में, और फिर आपने सुना शहबुद्दीन अंसारी साथियों की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आए सुनते हैं स्वर सरिता, रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो

0: कि चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
4: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
5: हम लिख के गया ऐसा करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
6: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
7: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
8: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says strong maritime capability is deciding factor for a country's economic and strategic influence and India is preparing for it. President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
11: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है। नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
10: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
11: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
10: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
0: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president will also interact with the members of the Saharia tribe working as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest personals and tourist guides to learn about their experiences and role in the project. Earlier on Sunday, President Murmu visited the Cheetah Command and Control Center at Kuno. The president viewed an exhibition related to the

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण। भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। रांची में आयोजित संगोष्ठी में बोले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। बीआईटी मेस्ट्रा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध, शैक्षणिक सहयोग और संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया एमओयू। राज्य भर में धीरे धीरे सक्रिय हो रहा मॉनसून, रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब। पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में नीदरलैंड को हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल कोलकाता में स्वदेश निर्मित तीन नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
2: सरकार पूरी कटिबद्ध थी, बच्चों के साथ ये वादा किया था कि ये जो री एग्जाम हो रहा है उसको पूरी सुरक्षा से, पूरी ईमानदारी से, बच्चों के सुविधाओं को देखते हुए कंडक्ट कराएगी। कम समय पे कराने के बावजूद किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी थी, तो NTA ने सरकार के सभी अंगों के साथ मिलकर इस एग्जाम को कराया है, जिसमें हमें सभी विभागों का योगदान मिला, सभी डिपार्टमेंट, सभी एजेंसीज का, जिसकी वजह से बिल्कुल टीम भारत, टीम NTA के समर्थन में आ गई, जिससे हम ये परीक्षा सुचारू रूप से कंडक्ट कराने में सफल हो पाए।
0: राजधानी रांची समेत राज्यभर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था किए गए थे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए NTA और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू थी। राजधानी रांची में परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घटाने का प्रयास किया गया तो उसका लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाएगा। BIT मेश्रा और IIT खड़गपुर ने संयुक्त शोध, शैक्षणिक सहयोग

0: संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान संयुक्त शोध परियोजनाएं, छात्र एवं फैकल्टी विनिमय, इंटर्नशिप और फैकल्टी विकास कार्यक्रम संचालित करेंगे। बीआईटी मेसरा के कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने इसे अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार आधारित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि यह साझेदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, जल संसाधन, जलवायु और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को नई दिशा देगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। CBSE ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। आजसू पार्टी के स्थापना दिवस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवण प्रभाकर ने बताया कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज धनबाद में जनाक्रोश मार्च निकाला जाएगा।
3: झारखंड की जनता का दमन हो रहा है, विस्थापितों का दमन हो रहा है, रैयतों का दमन हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है, कोयला माफिया है उनको जेल में डालने की बजाय आंदोलनकारियों को जेल में डालने का काम किया गया। तो इन सब मुद्दों को लेकर जनाक्रोश मार्च परेड गोल ग्राउंड से, धनबाद के गोल ग्राउंड से आरंभ होगा और कोयला नगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जाकर यह समाप्त होगा।
0: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 4 मिलीमीटर और खूंटी में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर जिलों में अगले एक सप्ताह तक बादल छाए रहेंगे। रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ सहित अन्य जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय हॉकी के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा, जब पुरुष और महिला दोनों टीमों ने विदेशी धरती पर शानदार जीत दर्ज की। ऑकलैंड में महिला टीम ने FIH नेशंस कप 2025-26 फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता और प्रो लीग 2026-27 में जगह पक्की की। वहीं नीदरलैंड में पुरुष टीम ने प्रो लीग मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 नीदरलैंड को 3-2 से हराकर उलटफेर किया। भारत के लिए जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल दागे। झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी की प्रथम वार्षिक आम सभा IPS डॉक्टर सरोजनी लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के लगभग 55 पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल प्रशासक और पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान श्रीमती लकड़ा ने खिलाड़ियों को जागरूक करने पर जोर दिया।
4: जो भी एक्स प्लेयर प्रयास है उनका हेल्थ बने रहे उसके लिए कई तरह से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम बना सकते, ज्यादा से ज्यादा संख्या एक्स प्लेयर्स जो है भाग लेंगे और ये एक तरह से उनका अच्छे हेल्थ के लिए भी वो अवेयरनेस बना सकते।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने नीट परीक्षा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, नीट यूजी में बैठे 20 लाख छात्र, बिहार में 9 फर्जी परीक्षार्थी धराए। दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान ने योगा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मांडर के डोभा में 2 बच्चों की डूबने से मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण, भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। रांची में आयोजित संगोष्ठी में बोले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। बीआईटी मेसरा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध, शैक्षणिक सहयोग और संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया एमओयू। राज्य भर में धीरे धीरे सक्रिय हो रहा मॉनसून, रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब। पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में नीदरलैंड को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी रांची के प्रसारण के साथ फिलहाल मैं हूं ओली मिंस। नमस्कार साथियों।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अब सुनिए लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नागपुरी लोकगीत जानकी देवी और साथियों के गाए हुए।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पे। आइए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म शक्ति का ये गाना।

और इसी गीत के साथ गीत गुंजन समय आगे दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल दिल का ये गाना। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, सुनते हैं जोहार पलामू।

जोहार पलामू सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज के हमारे सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं आज का छोटा प्रयास कल की बड़ी सफलता बन सकता है। जी हाँ, छोटे छोटे प्रयास करके ही हम एक अच्छे सफल काम को हम अंजाम दे सकते हैं, एक अच्छा काम कर सकते हैं। इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: जोहार पलामू।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं मौसम की। तो आज का अधिकतम तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 29 डिग्री। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं हम आज अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो हम कल मना रहे थे योग दिवस। जी हाँ, योग दिवस सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि हमारे जीवन में हर दिन योग करने के लिए है। अगर हम एक दिन योग करते हैं तो उसका कोई प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता, मगर हम जिस प्रकार से अपने जीवन में खान पान, आना जाना, घूमना फिरना ये सब करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम नियमित रूप से योग करते रहें तो हमारे शरीर और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। तनाव मुक्त और निरोगी रखने के लिए हमारे योग जो है मदद करते हैं। योग मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, रक्त संचार में सुधार करता है। अपने दैनिक जीवन के रूटीन में अगर हम शामिल करें तो बहुत सारे समस्याओं का जो शरीर के अंदर जो समस्याएँ हैं वो उनका समाधान होता है। ब्राह्मणी और अनुलोम विलोम जैसे प्रमाण

प्राणायाम मन को शांत करते हैं, फेफड़ों की कार्य प्रणाली में सुधार करते हैं। मंडूकासन पेट के अंगों को सक्रिय रखने, पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। भुजगासन पीठ दर्द की समस्या से राहत और फेफड़ों के लिए उपयोगी है। बालासन का थकान दूर करने और रीढ़ की हड्डी को आराम देने के लिए उत्तम है। स्वशासन योग के अंत में स्वशासन करने से शरीर और दिमाग को पूर्ण शांति मिलती है। हमारे लिए योग के स्वस्थ लाभों के बारे में काफ़ी हमारे लाभदायक है। हमारे लिए कोई विशेष स्वस्थ समस्या जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कमर दर्द, तो हम ऐसे स्थिति में भी अगर हम योग करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं प्यारा सा गाना।

0: और इसी के साथ जो हर पल हम उसे में आगे दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का, संयोजक थे श्री एस के लाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती है।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा की आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
4: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना

0: लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
1: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
0: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
1: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
0: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है।

0: चौथाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो?
1: हाँ?
0: मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे, वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती?

0: कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रहे।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, है? बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
0: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में।
0: हाथ से निकल गई।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेत के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम। ये कार्यक्रम तो वैसे हम लेकर आते हैं आपके लिए, जहां माइक हमारे हाथ में होता है पर रिमोट आप सभी के हाथों में होता है। जी हां, आपके संदेश आपके ईमेल के जरिए हम तक पहुंचते हैं और आपके चुनिंदा जो गीत होते हैं, आपके पसंद के जो नगमे होते हैं, वो हम लेकर आते हैं। तो आइए सुनते हैं ये नगमा आपकी पसंद का और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की।

0: मैंने कहा इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए,
0: राइट।
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे, जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि

0: हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय, और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है, मैं जॉब कर रही हूं, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई, उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह,
0: तो वो, हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या प्यारी
0: तो
1: बात है। यहां एक बहुत क्यूट बात सामने आई है, और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे
0: हाँ
1: बढ़ती है।
0: हाँ
1: हम जिस समय और समाज में हैं, वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि
0: राइट
1: चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है, और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ ओके, तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं, खुल
0: ओके
1: हाँ मतलब उतना सा, खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है,
0: हाँ,
1: ठीक
0: सवाल
1: है।
0: आता है कि ये आखिर
1: हाँ
0: क्या है
1: क्या
0: ये।
1: है, राइट। श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूं। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया।
0: वाह,
1: तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह
1: ओके,
0: वाह
1: सो
0: वाह,
1: बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है

0: ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए। तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते, फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई, आते एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और
1: वाह,
0: अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी, पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है।
1: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे,
0: सही
1: क्योंकि
0: बात।
1: बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी।
0: राइट।
1: चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हों तो वो बताएं।
0: राइट। सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं।
1: जी
0: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणि बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी। ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज कि दे आर इन लव विथ ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं। मतलब मम्मी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूं, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया। और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
1: बहुत सही,
0: ठीक है।
1: बहुत ही सही।
0: तो और वो जो था, वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई, तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी, पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कंपटीशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर, और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के
1: वाह
0: ऊपर।
1: वाह, क्या प्रयोग।
0: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए, जब भी चाहिए, वो अवेलेबल होती थी इस
1: क्या
0: तरह
1: बात
0: से।
1: है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे
0: राइट।
1: और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग
0: हाँ
1: अलग शहरों में गांवों में जाना होता है।
0: सही।
1: उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी,
0: ऑफ कोर्स।
1: उनकी बात करते हैं।
0: उसमें मैं सबसे पहले, पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो
1: बिल्कुल
0: निर्देशक भी थे। राइट। सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे, जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखर एका राजा जी, ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची, ये भी एक था। पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था। बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप

0: का जिक्र मिलता है,
1: करेक्ट,
0: काई स्वप्ने भी काईची अगर
1: हाँ,
0: मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, उसका
1: हाँ,
0: भी खूब जिक्र मिलता है
1: करेक्ट,
0: कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
1: किया है।
0: कामयाबी
1: सो काही स्वप्ने विकाईची ये जो प्ले था, ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23, 24, मतलब ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पर INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड्स जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई, बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था,
0: और वो पापा, भी पापा के निर्देशन में।
1: एग्जैक्टली तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
0: हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था, और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी, और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती है।
1: करेक्ट करेक्ट। तो ये प्ले था, उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर, जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरडे को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था।
0: गजब।
1: इट वॉज इज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वॉज अ आउट एंड आउट कॉमेडी, और बहुत मजा आया लोगों को, और एक लक्ष्मीकांत बेरडे जैसा कलाकार आया, पापा थे लक्ष्मीकांत बेरडे थे, तो इट वॉज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे, और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे हाँ वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
0: वाह
1: ओके और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए वो हैंड्स अप ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी। तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी। तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था। और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बंबई में।
0: हाँ जी।
1: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके। और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है कुछ अर्जेंट काम होगा तो सॉरी सॉरी सर करके तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस। और
0: क्या प्यारी बात है। वाह, यहां भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर।
1: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है मेरे महबूब में क्या नहीं।
0: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं।
1: ओके, तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अवचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो,
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे,
0: किस इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो ऐसे ही उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और 2 साल बाद वो घर मालिक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और 1 मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था
0: आर्टिस्ट
1: कलाकारों
0: का।
1: के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
0: हाँ, उसकी बात आगे करेंगे।
1: उसकी आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे,
0: बिल्कुल
1: रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो, तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
0: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
1: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं, राइट?
0: बिल्कुल।
1: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना

0: उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्सअप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता
0: सही
1: है।
0: बात
1: उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया।
0: राइट
1: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
0: नहीं थी
1: तो
0: तो
1: पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए।
0: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी,
1: जी
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे। तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त। तो आप करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो। मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं, तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त। जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूं फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूं, यजतला लोकमान्य टिळक हा रामोशा सारखा दिसतो। रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई, तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है। हाँ, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार, जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
1: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए।
0: हाँ
1: और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है।
0: हाँ हाँ
1: वो
0: हाँ
1: क्यों है?
0: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये एक उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है,
1: बिल्कुल
0: अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, अभी
1: जो
0: मैं
1: कसर रह गई
0: जो
1: है।
0: कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा। मुझे याद है

उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी. अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था. उस वक्त 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था. तो किसी भी रोल

0: हाँ एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकाल कर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
1: ओके,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: तो
1: कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था। इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राष्ट्रीय स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं, और
0: हाँ
1: दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है। खोज कर
0: करेक्ट,
1: अगर आप देखें
0: हाँ
1: तो वेव्स पर शायद ये अभी भी
0: वेव्स पर
1: उपलब्ध
0: है।
1: है। तो
0: वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
1: उसका जिक्र करने से पहले यहां एक गाने की जगह बनाते
0: प्लीज
1: हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो
0: राइट।
1: बताइए कि कौन सा गाना यहां आना
0: यहां पर
1: चाहिए।
0: तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है, वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: क्या बात है,
0: वो
1: गुलजार
0: सुनते
1: साहब के
0: हैं
1: बोल,
0: ऑफ कोर्स।
1: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की। पद्मश्री पद्मजा पेनानी जोगेलकर की आवाज में संदीप गुप्ते के द्वारा लिखी गई और महेश खानोलकर के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस प्यारी सी गजल के साथ।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अभी संदेशों के पहले हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोलों से सजी हुई, जिसके संगीतकार फैयाज शौकत है, उस गजल को। आइए चलते हैं अगली गजल की ओर, जिसे गाया है इंद्राणी रिजवी ने, कतील सिफाई ने इसे लिखा है और संगीतकार हैं बेनी सतामकर।

0: साल जाए।
1: हम सुन रहे थे नगमा जिसके गायक और संगीतकार हैं ए हरिहरन और जिसके गीतकार मुमताज राशिद।
2: फराज की एक ताज़ा गजल पेश खिदमत है, ये गजल आपको जरा आहिस्ता चल की याद दिलाएगी।

0: हम सुन रहे थे गीतकार अहमद फराज के बोलों से सजी हुई पंकज उदास के द्वारा गाई और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस गजल को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम रंग तरंग में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और सुंदर सा नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, जिसे हमने चुना है सुलक्षणा पंडित गजल्स एल्बम से, जिसे गाया है सुलक्षणा पंडित ने। शाहबी अब्बास शाहदाबी ने इसे बोल दिए हैं और महेश चंदेल ने इसे संगीत

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह जगजीत सिंह की आवाज में इस नगमे को, जिसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

हम सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी नगमा, जिसे गाया भूपेंद्र ने और संगीतबद्ध किया भूपेंद्र ने ही, और शब्द हैं गुलजार के। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। रंग

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्टेक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादें सजाई हैं गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा, मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म शरारत से, मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

0: हम सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के पोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं परख फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादों की महफिल के साथ। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External

0: शुरू होंगे और छात्रों को प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप तथा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ साइबर अपराध समन्वय केंद्र और अन्य एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रांची में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का सफल समापन हुआ, जिसमें 100 टन से अधिक आमों की बिक्री हुई। इस महोत्सव के दौरान करीब 60 लाख रुपए की बिक्री दर्ज की गई और राज्य के जनजातीय किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों को बड़ा बाजार उपलब्ध हुआ। नाबार्ड ने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, बाजार से जोड़ने और जनजातीय आजीविका को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने धनबाद मंडल के छिपादोहर, बरवाडीह, महुआमलान रेलखंड में कमीशनिंग कार्य के लिए कल से 27 जून 2026 तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने की घोषणा की है। इस कारण रांची सासाराम इंटरसिटी समेत कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आयुष्मान भारत योजना की खूबियां बताई। श्री सेठ ने कहा कि इस योजना से 9 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
1: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देशवासी जो इलाज एफोर्ड नहीं कर पाते, खेत खलियान बिक जाता था, बेटा बेटी को पढ़ाई छूट जाता था, आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड, देश भर के करोड़ों लोग आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। लगभग 9 करोड़ से ऊपर लोग अब तक देश भर में आयुष्मान से इलाज करा चुके हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हो गई। यह राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से देश भर के साथ ही रांची में 6 परीक्षा केंद्रों पर यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 पालियों में 30 जून तक होने वाली इस परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानी पूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा दिवस से पहले अपनी परीक्षा तिथि, पाली, समय और अपने परीक्षा केंद्र की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके अलावा PWD या PWBD अभ्यर्थियों को अपने आवंटित केंद्रों का पहले से दौरा करने की सलाह दी गई है ताकि वे स्थान और उपलब्ध सुविधाओं से परिचित हो सकें। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राज्य में कल बारिश के दौरान वज्रपात से CPI नेता और एक महिला वार्ड सदस्य समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 किशोरों सहित दर्जन भर से अधिक लोग झुलस गए। इसके साथ ही देवघर, बरहेट और चित्तरपुर में भी वज्रपात से मौतें हुई। संताल कोयलांचल में 4, खूंटी में 2 और रामगढ़ में 2 लोगों की जान गई। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 461 अंक बढ़कर 77,264 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,153 पर है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG और फार्मा सेक्टर में बढ़त देखी गई। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है।

0: राजधानी रांची में चल रही पांचवीं झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के ओपन वर्ग में पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास पहले, पश्चिमी सिंहभूम के तनिष्क कुमार दूसरे और रांची के यश रंजन तीसरे स्थान पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे सम्मान। पीएम सेतु योजना के तहत झारखंड के 7 आईटीआई को उद्योगों की जरूरत के अनुसार किया जाएगा विकसित। 1,687 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रांची में नाबार्ड के आम महोत्सव में 100 टन से अधिक आम की हुई बिक्री। जनजातीय किसानों और किसान संगठनों को मिला बड़ा बाजार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट की परीक्षा आज से शुरू। रांची के 6 परीक्षा केंद्रों पर भी 30 जून तक 2 पालियों में चलेगी परीक्षा। निषेधाज्ञा लागू। और राजधानी रांची में चल रही पांचवीं झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का हुआ समापन। पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास बने चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जो होता है उसको कभी कोई शायरी तो सुनाई होगी। कौन सी शायरी सुनाई है वह जरूर साझा कीजिएगा। हो सकता है वह आपके जीवन की पहली शायरी हो या फिर आपकी खुद की लिखी कोई शायरी हो। वो शायरी जरूर हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात कहना भी बनता है ना। तो अपनी पत्नी, पति, प्रेयसी, प्रेयस किसी के लिए कोई शायरी या कोई कविता की कुछ चंद चार पंक्तियां कही हो तो हमारे साथ साझा कीजिएगा। और अब हम अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे, पर उसके पहले हमारे श्रोताओं ने कुछ लिख भेजा है, वो आपके साथ साझा करती हूँ कि मुझे गुलजार की वो शायरी पसंद है। समझने को कठिन है लेकिन अच्छी लगती है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए, औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं ये। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया। हमारे एक और श्रोता ने शायरी लिखी, तन्हाई में खामोशी ही जवाब बन जाती है, वो ना रहकर भी हम सफर बन जाती है। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के कई सारे शेर इन्हें पसंद है। उनमें से इन्होंने लिखा है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और उन्होंने कभी कभी फिल्म के इस शेर को भी लिखा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया शेरों को हमारे साथ साझा किया और भी लोगों ने किया है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नीट की परीक्षा हो रही है, तो नीट की परीक्षा को सरल करने के लिए हमने आपको ये प्रश्न दिया है कि पहला शेर, पहली शायरी अपने प्रेयस, प्रेयसी, पति, पत्नी, महबूब के लिए कब पढ़ी थी तो और कौन सी पढ़ी थी वो जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अगली नगमे की तरफ, जिसे हमने आपके साथ जो शायरी साझा की है इबारत में वो ये है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और इसके आपने पहचान लिया कि फिल्म कभी कभी से है, बहुत बढ़िया बात है। बस बताइएगा कि इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार का नाम बताइए और सुनिए ये गीत।

एक बहुत सुंदर सा गीत हम अभी सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, बिल्कुल सही बताया आपने, खयाम। और अब हम चल रहे हैं हमारे कुछ और शायरों की तरफ, जो हमारे बड़े प्यारे से श्रोता है और उन्होंने बहुत सारी शायरियां हम तक पहुंचाई हैं। एक एक लिखते हैं कि कुछ इस तरह से जिंदगी को हमने आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। वाह, हमारे श्रोता ने याद किया है वो खूबसूरत से नगमे को कि फिर छिड़ी बात बात फूलों की बात है या बारात फूलों की। जी बिल्कुल, तलत अजीज की गजल बड़ी प्यारी सी है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, तन्हाई हमारे दिल में झांक कर बीते हुए पल को याद करने का जरिया है, यहाँ हम शांति से अपने आप से बात कर लेते हैं। बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बसीर बद्र का ये शेर वो लिख रहे हैं। इसके साथ वो लेटे हुए हैं कल से बिस्तर पर, जख्म लिए हुए गिरा जो हाथ से फूल।

सीधा पांव पर जा लगा। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में, यानी ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी बताई है कि सूरत गुजरात में बारिश शुरू हो गई है, और वह कह रहे हैं कि गार्डन में टेबल पर रेडियो बज रहा है सुरीला सफर, हाथ में गरम चाय का कप और सामने बारिश है, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही है आपने, और मैं आपको सुनवा रही हूँ ये संदेश, लेकिन एक बात आपसे कहनी है। रोमांटिक तो शायरियाँ बहुत सारी हो गई, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाती हो, थोड़ा वीर रस की जो पंक्तियां हो, शेर हो, शायरी हो, कविता हो, पंक्तियां हो, कुछ भी जिसमें वीरता जगाती हो, ऐसा कोई एक जरूर बताइएगा। तब तक सुनिए संदेश।

0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर, और इस सुरीला सफर में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं शेर और शायरी के बारे में, और आप बड़े अच्छा अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर और शायरी की बात हो रही है, तो जिन गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहां आरा का तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहां। गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती है कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम। और वो बहुत खुश होते हैं, क्या बात है। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तनकी सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मधोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी दुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियां आपने कही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुबे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रह गए, कारमा गुजर गया और हम गुबा, क्या बात है। जॉन एलिया की पंक्तियाँ ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ़ करें या कहने में कि जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं, यूँ जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या, ऐसी बात है। हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐ विविध भारती तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेर व शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज कागज पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है, और आपसे हमने पूछा कि हो सकता है कि कोई बड़ी देशभक्ति की पंक्तियाँ या बड़ी शौर्यवीरता की पंक्तियाँ, कोई पंक्ति जो शेर में हो, कविता में हो या फिर शायरी में हो, तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफानों में चलने का आदि हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। गोपालदास नीरज की ये पंक्तियाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, और इस गीत की गायिका को पहचानिए, बहुत आसान है इस आवाज़ को पहचानना क्योंकि आप बराबर इन्हें सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज़ को पहचानिए और पहुँचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई वीर रस से भरा हो, कोई शेर शायरी या कविता, कुछ पंक्तियां हम तक साझा करें।

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से यह गीत, सहरयार के बोल खयाम का संगीत। और आप सबसे पूछा था कि आवाज़ किसकी है, तो आप सबने सही पहचाना, सुमधुर आवाज़ आशा भोसले की है, बिल्कुल सही। और अब हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, उनको हम साझा करते हैं। कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उल्लुओं की कमी नहीं शाख पर, ये शेर थोड़ा सा कुछ अलग है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कुछ शेर इस तरह का है जो आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, मैं

ऐसे कह दूं तेरी याद रात भर आई, क्या बात है। हमारे गौशोता ने लिखा है कि उनके जीवन साथी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन था और सीनियर सिटीजन उसी दिन पिकनिक पर गए थे दोस्तों के अनुरोध पर। तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाइए, हसरत जयपुरी की पंक्तियां बोल दी थी, बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी से बहुत उनकी समझदारी से प्रेरित हैं और वह उनका सदा साथ देती हैं और उनके जीवन के मंगलमय की प्रार्थना वो कर रहे हैं और हम भी आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं, ऐसे ही साथ बना रहे। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप बढ़िया कोई जबरदस्त सी बड़ी जोरदार सी कोई बढ़िया सी शायरी दीजिए जो देशभक्ति की बात हो या वीरस की बात हो। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल, बहुत प्रोत्साहन देने वाला शेर है और आपने भी यही बात लिखी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनके शहर में आग बरस रही है, इस पर लिखते हैं इस समय दिल शायराना होने के बजाय दिल गर्मी से जल रहा है। अरे बारिश हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, बस समय की बात है, अपने समय से सब कुछ आ जाता है। और हमारे श्रोता ने लिखा, इश्क का नमक की मोहब्बत की चाशनी में तेरी हम डूब रहे, मेरे प्रेम कहानी का रसाई मोहब्बत। अच्छा, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जी बहुत बढ़िया होता है ये प्रेम भी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, ये शेर हमारे एक ये पंक्ति हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता ने लिखी है दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए हमारे देश में हाथी का नाम राम सिंह है, चेतक का नाम, घोड़े का नाम चेतक, और इनमें भी वही देशभक्ति है जो एक देशभक्त में, एक देशभक्त राजा में है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो, जी वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियां उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा दया त्याग तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहाँ कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की है। बिल्कुल सही, बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें पैती रसदार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। श्रोता लिख रही है कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेरो शायरी की बात के बारे में कह रही हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों ने भी करा है कि कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कितनी सुंदर बातें जीवन का ज्ञान दे जाते हैं, मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है इन सब में। बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये गाई किसने है, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियां देशभक्ति से भरी अगर कुछ है तो भेजते जाइएगा और सुनिए ये।

मिर्ज़ा गालिब की इन पंक्तियों को मिर्ज़ा गालिब फिल्म से ही हम सुन रहे थे। गुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और तलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी शेर शायरी आपको पसंद आती है तो हम तक पहुंचाते जाइएगा। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे इसकी यह लाइन पसंद है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, और जान पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मिट्टी की खुशबू से महके मेरा हर अरमान, भारत की शान में बसता है मेरा सम्मान, जब तक धड़कन चलती है सीने में यारो, तिरंगे पर नाज रहेगा यही मेरी पहचान। बिल्कुल सही बात है, वतन की धूल भी आंखों में सुरमा लगाती है, ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे इसके सम्मान में, यही दुआएं सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में रहती हैं। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया सी लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदम खुदा आदमी खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बात कहते हैं और लिखते हैं कि उन्हें एक कविता बचपन से पसंद है, और कविता का वो कहते हैं सिंहासन हिल उठे वाली जो कविता उन्हें पसंद है, उसके बारे में जिक्र किया है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार सी कविता आई है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूँ, तेरी गली ना छोड़ू दुनिया में छोड़ दूं। और ये शायरी हम सब बचपन में बहुत पढ़ा करते थे, शायद याद हो आपको। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होंठ पर मुस्कान बनकर तो कभी आंखों में पानी बनकर। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता ने एक कविता खुद ने शायद ये स्वयं ने लिखी है या उन्होंने भेजी है, वो लिखती है मानवता भट गई, ये युद्ध के ऊपर ये कविता लिखती हैं। और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ, बस करो अब ये युद्ध, बन जाओ सारे बुद्ध, सारी सरहदों में शांति से रहो, ना किसी की आंखों में आंसू भरो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक बार कहते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार किसी को उन्होंने शायरी कही थी, वो किसी कौन है हम आप समझ सकते हैं, पर वो पलटकर उर्दू शब्दों का अर्थ ही पूछने लग गई। आप हिंदी में शायरी कह देते, हिंदी में भी कई सारी शायरियां बनाई गई हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, वतन की आबरू पर आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहां होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, कि जब बिस्मिल जमी अपनी और अपना आसमां होगा। जी बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं, और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, जो गए हैं वही तो लौटते हैं, जो गए ही नहीं वो क्या खाक लौटेंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने में आ रही हैं, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से। तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ, और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ। और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये शोर फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो जरूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है। और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है इसके अलावा, तो जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा।

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज़ में संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी और उसमें एक पूछा था कि जीवन दर्शन को छू लेने वाला ये बहुत प्यारा गीत है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी की छोड़ आए कहीं अपनी जवानी कहीं।

एक संतोष होता था शायर, गजल बन गई है दर्द की राजधानी। ये वो लिखते हैं संतोष आनंद की, संतोष आनंद की संतोष फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है, और हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत को बहुत पसंद किया है। और हमारे श्रोताओं ने शायरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यानी समझाया है, उनको बहुत खूबसूरती के साथ बताया है, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं, तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। हाँ, इस बात को, इस इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया, परंतु ये उसके वर्जन में थे, उस गाने में थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला इस गीत का उन्हें पसंद है कि जो दिल को तसल्ली दे वह साज उठा लो, दम घुटने से पहले आवाज उठा लो। जी, बहुत बढ़िया बात, और बहुत प्यारा सुरीला सफर आप सबके साथ रहा, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और आप सबका जीवन मंगलमय, सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, बस यही प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। नमस्कार।

0: Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रूपये बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने

0: एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का

0: इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास की बोलो सी रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण होने जा रहा है। अलग राज्य के निर्माता और पूर्व मुख्यमंत्री देशम गुरु शिबू सोरेन को कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश का यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेंगी। देशम गुरु के सुपुत्र और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति के हाथों इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। यह प्रतिष्ठित सम्मान शिबू सोरेन को लोक कल्याण और आजीवन आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और अधिकारों की रक्षा के लिए दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंपई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता और आस्था से जुड़े पवित्र धार्मिक स्थल जाहेर थान जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का जाहेर थान, देशावली और माझी थान जैसे पवित्र जगहों पर जाकर शीश नवाना एक ऐतिहासिक पल है। चंपई सोरेन ने इसे पूरे आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा सम्मान बताया है।
1: आज बड़ा गौरव आदिवासी लोग समझ रहे हैं, मुझे बहुत गौरव भी लग रहा है कि आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहाड़पुर गांव में जाहिर थान में जाहिर गाड़ में डोबो जोहार किया, प्रणाम किया। हमारा आस्था, हमारा अस्मिता जो जुड़ा हुआ है, ये आज ऐतिहासिक का पल है।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड के सिनपुर ग्राम पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास और मदरसा जामिया इस्लामिया की मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, सुरक्षित आवास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा उन्होंने मेहरमा प्रखंड के गझंडा पंचायत स्थित अमडीहा में एक नए नाला निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने धनबाद मंडल के सीपीडीआर बरवाडी महुआ मिलान रेलखंड पर तीसरी अप लाइन जोड़ने के लिए 23 से 27 जून तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की घोषणा की है। इस कारण रांची सासाराम एक्सप्रेस सहित कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं हटिया नई दिल्ली और टाटा जम्मू तवी जैसी लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। इस दौरान बरवाडी स्टेशन पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव भी बंद रहेगा। राज्य में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में हवाओं के रुख में बदलाव के साथ ही बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजधानी रांची सहित

0: राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लेने की अपील की है। हजारीबाग में जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारना है। यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले होनहार निशानेबाजों को सीधे राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
1: ये तृतीय हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप शूटिंग का ये होने जा रहा है। क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ज्यादा थी बच्चों की संख्या में, उसी लिए 4 दिवसीय इसको किया गया है। इसमें 4 दिन में करीब करीब 400 बच्चे शामिल हैं।
0: झारखंड T20 क्रिकेट के लीग चरण का समापन हो गया है। जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आखिरी मुकाबलों में छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स ने शानदार जीत दर्ज की। पहले मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स ने विराट सिंह के धमाकेदार 106 रनों की बदौलत 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और जमशेदपुर स्टीलर्स को 85 रनों के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं दूसरे मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स ने एक तरफा खेल दिखाते हुए धर्माद डायमंड्स को 9 विकेट से शिकस्त दी और टूर्नामेंट में विजयी समापन किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे
2: मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं, और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है,
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
2: सही
1: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
2: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
1: बिल्कुल। और दीपा, आज

0: हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे ही करेंगे, और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे, है ना?
1: बिल्कुल। और देखो वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो। तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
0: बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है, और हम देखते हैं दीपा कि आज बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है? या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: ला ला ला।
1: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ,
2: बिल्कुल,
1: जहां पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
2: जी,
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
4: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
1: पिछले भाग में आपने सुना,
5: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
6: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
7: भैया, क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
1: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का 4वां और अंतिम भाग।
5: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
0: इतनी जल्दी सुध ली?
5: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो होकर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। यह वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। यह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदे निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
2: अम्मा ये देखता क्या हूं?
8: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
2: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
8: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
2: बहुत अच्छा होता।
9: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
2: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
9: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
5: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
2: अम्मा अम्मा मुझे यहां से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
5: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
9: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के तीसरे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
2: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
3: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं।

0: पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
1: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
2: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,
2: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
1: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
2: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: आशा है आपको ये कहानी आभूषण बहुत पसंद आई होगी। और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो दीपा, हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
4: बिल्कुल, और कहानी तो सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
3: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगले क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
4: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
3: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, उनका नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
4: हाँ, तो ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
3: बिल्कुल, और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती। तो वही माता पिता और शिक्षक देखो बच्चों की मदद करें।
4: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहाँ अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है, ये पूछना। फिर बच्चों को डराने के बजाय हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है। जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है। तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था,
3: रूटीन ही नहीं कहना चाहिए,
4: और अब एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीजें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजे तो बच्चों का मन भी लगेगा।
4: बिल्कुल,
3: है ना। तो हम
4: वही देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की और बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
3: बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं, लेकिन देखा जाए दीपा तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है, है ना।
4: बिल्कुल, क्योंकि तो, ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
3: बिल्कुल, तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराए नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको।
4: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने
1: हम
0: वाली है।
1: इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
0: बिल्कुल, गर्मी
1: और हर एक अच्छी चीज के
0: जी
1: साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ
0: बिल्कुल,
1: में
0: क्योंकि
1: होती
0: देखो
1: है।
0: गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश की फुहारें आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो
1: बिल्कुल
0: मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहला तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और
1: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से है ये, और कह रही है कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी, और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या

0: गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें। घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें। घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी है, मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास जहां पानी जमा रहता है वहां पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो, और सफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल। और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता
1: मच्छर
0: है,
1: उसी में
0: तो हम
1: पनपते
0: उसमें
1: हैं।
0: हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है।
1: बिल्कुल है। और जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल
1: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
0: और ये
1: बचना है।
0: इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं, तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात है, क्योंकि विशेष तौर पर मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल
0: छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको कपड़े पूरे
1: पूरे
0: बाहर के
1: पहनाएं।
0: और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो,
1: और दीपा,
0: लेकिन
1: इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर
0: जी
1: हम गहरे रंगों के भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं।
0: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं
1: जी
0: चाहते।

0: डाला फिर से तो।
1: अब तो भाई सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद, जो सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1 चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनिया की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाई मज़ा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलुओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है, और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फैटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी

0: चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का वो रखना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजा कर सर्व कीजिए।
1: और

0: तो दीपा देखो, बात तो करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और
0: तो
1: अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा, तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
0: अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से सभी को, मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने, आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवें आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
1: अच्छा।
2: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अब 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गाँवों में चले जाए, छोटे शहरों में चले जाए, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये 2-3 लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते
1: जी। तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
2: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं बीएमआई, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है। अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आया कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसान देवा दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं। क्योंकि अगेन, अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है
1: जी।
2: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक एमआरआई करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल सीटी स्कैन भी अवेलेबल है
1: जी।
2: अभी ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे
1: जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
2: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
2: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ एमबीबीएस की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। फिर 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
2: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे, तीन तीन
0: जी
1: साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है
0: जी
1: हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू इट, तो मैंने 1 साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं
0: जी
1: हम,
0: जी
1: एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड
0: जी जी
1: ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स
0: जी
1: पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे
0: जी
1: पढ़ने को,
0: जी
1: फिर
0: जी
1: 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया
0: अरे
1: वापस।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें।
0: जी
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया, तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक
0: जी
1: गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाइयाँ, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयाँ अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, फिर कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज़्यादा दवाई हम यूज़ करते हैं इसके लिए, वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो
0: जी
1: आजकल
0: जी
1: काफ़ी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है।
0: ओ
1: तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वे वज़न नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, मैं बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी,
0: जी
1: उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, चौदह
0: जी
1: घंटे
0: पढ़ाई
1: काम
0: कर
1: कर रहे हैं,
0: रहे हैं उनके।
1: स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूँ, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा,
0: जी जी
1: एंड फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है,
0: जंक फूड।
1: जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सब से भी अपने बॉडी के हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे,
0: जी
1: स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर
0: यस
1: लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और
0: हाँ
1: काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम. फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है. तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, पर उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती हैं.
0: जी जी तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है. तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं. तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, आप 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा. ये बहुत बड़ा नंबर है. आई मीन ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ. अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर. बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है. एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है. तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कही जाते.
0: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को.
1: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ, क्योंकि लाइक थोड़ी बीट होनी चाहिए. भाग मिल्खा भाग वाला गाना,
0: क्या बात है,
1: मुझे पसंद है.
0: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है. सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए.

0: अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोरायसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही हैं। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी

0: तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
1: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह, या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
0: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है, जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है, क्या
0: हाँ,
1: है?
0: ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है
1: जी
0: उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7 5.8 होता है मोस्ट प्लेसेस में। अगर आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6 5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज के दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है। सो इट वर्क्स बोथ वेज।
1: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए
0: ना,
1: पहले?
0: अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी पुअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल ये होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल सब आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और
1: जी
0: थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
1: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में, कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा
0: हाँ,
1: बताइए।
0: ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके
1: जी
0: दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर
1: जी
0: होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70 to 80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10 से 15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो
1: यस
0: प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये

0: है कि आगे जाके नहीं खाते हम, इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपके मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बताते हैं, विविध भारती से यह है कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है।
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है,
0: जी
1: या
0: जी
1: वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज़्यादा लो, फल फ्रूट ज़्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी को अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है,
0: जी
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ और लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रीगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है।
0: जी, तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
0: जी जी।
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूं, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं, जैसे IBS बोला मैंने पहले,
0: जी, जी, जी.
1: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
0: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
1: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से ही शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है। माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
0: दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: Correct.
0: और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
1: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया।
0: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयाँ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं।

है हमारे काफी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई, जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज अ प्रॉब्ली अ

0: देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
1: जी, लेकिन वो आदत न डाल लें, ये गड़बड़
0: करेक्ट,
1: है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
0: हाँ, अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम
1: जी
0: क्या है।
1: जी
0: इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो
1: जी
0: डायबिटीज़ पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है, लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं
0: बिल्कुल।
1: वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
4: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
3: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: छायर।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम क्रिकेटा। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को 255 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। यह पुनर्गठित योजना 31 मार्च 2031 तक शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से सभी राज्यों में लागू रहेगी। इसमें विधि संजीवनी और एआई संचालित न्याय सेतु, चैटबॉट जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए 3 करोड़ लाभार्थियों तक कानूनी मदद पहुंचाने का लक्ष्य है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची जिले के इटकी स्थित सिमरा गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड की सिनपुर ग्राम पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास और मदरसा जामिया इस्लामिया के मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आदिवासियों को बड़ी सौगातें मिली हैं। उन्होंने रामगढ़ की स्थानीय समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिलाया। और हजारीबाग में जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुरानी गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

सारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना

0: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
1: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले।
0: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
2: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
0: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माई लव, संगीतकार दान सिंह।
1: हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम।
0: फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
2: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से, आकाशवाणी का ही डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आइए सबसे पहले एक नज़र हम डालते हैं सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 5:35 पर आप सुन सकेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और साथ ही आप जय पूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता सुनेंगे। विषय होगा मानव सभ्यता का नया अध्याय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 6:02 का समय होगा ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। इस कार्यक्रम में चर्चा सबसे पहले हम आपसे बातें करेंगे हरी खाद के प्रकार उसकी खेती पर, साथ ही आप एक और चर्चा सुनेंगे जिसका विषय होगा खरीफ की तैयारी। इसी कार्यक्रम के तहत आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे। विषय होगा मुर्गियों की देखभाल और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा का समय होगा 6:23 का। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी। आज की बात में हम आपसे बातें करेंगे अंतर्वर्ती खेती से लाभ, और इसी कार्यक्रम के तहत कृषि विशेषज्ञ पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से लेकर भेंटवार्ता सुनेंगे। विषय होगा मोटे अनाजों में शामिल फसलें और उसकी वैज्ञानिक खेती। इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। आज की नसीहत में हम आज आपसे जो बातें करेंगे उसका विषय होगा गेहूं में कीट प्रबंधन। 7:15 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का, और 7:45 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे अनिंद्रा कारण और उपचार। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष रांची के, और 8:00 होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। एक बार फिर हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की ओर, सुनाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समय होगा रात्रि के 10:00 और हर रोज की तरह सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर। अभी आप सुन रहे थे आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ही डाल्टनगंज केंद्र है।

घर आंगन सुनने वाले तमाम बहनों को नमस्कार। बहनों, आज हम आपसे बातें कर रहे हैं जिस विषय को लेकर, विषय है कुंठा से कुछ ऐसे उभरे। और हम, जी हाँ बहनों, सच पूछिए तो कुंठा आंतरिक घुटन, बेचैनी, झुंझलाहट और हताशा, निराशा भरी ऐसी नकारात्मक भावदशा है जहाँ व्यक्ति की इच्छाएं पूरी न हो पा रही हों या इनमें कुछ बाधा पहुँच रहा हो। बहनों, अधूरे लक्ष्य, अप्रत्याशित अवरोधे, गलतफहमियों के चलते एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमारी आशा अपेक्षाएं यथार्थ से मेल नहीं खा पाती। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल का तनाव, संबंधों की खटास, बिगड़ा स्वास्थ्य, यहां तक कि दैनिक जीवन के गीले शिकवे और असुविधाएं इनको उत्प्रेरित करते हैं। जी हाँ बहनों, कुंठा दीर्घकालीन तनाव के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया की स्थिति है जब व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने में असक्षम और असहाय अनुभव करता है। अधूरी आशा अपेक्षाएं और लक्ष्य की पूर्ति न हो पाने को इनका पहला कारण और सबसे अहम कारण समझा जा सकता है। व्यक्ति का लक्ष्य बहनों प्राप्ति की दिशा में वांछित प्रगति का न हो पाना, कार्यस्थल में जहाँ वो काम कर रही हैं दबाव और तनाव की स्थिति और आर्थिक तंगी वगैरह जो है कुंठा का भाव जगाते हैं। और बहनों, स्वास्थ्य संबंधी असाध्य स्थिति कुंठा को जन्म दे सकती है। बहनों, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते कदमों में आने वाले जो रुकावट है और चुनौतियों का ये कुंठा का कारण बनती है। अप्रत्याशित घटनाएं जिसकी किसी ने आशा नहीं की हो और प्रतिकूल परिस्थितियां व्यक्ति को तय मंजिल की ओर बढ़ने से रोकती है। हाथ में लिए गए काम का अत्यधिक कठिन होना और इसका समय साध्य और चुनौतीपूर्ण स्वरूप कुंठा के भाव को जगा सकता है। फिर होता ये है बहनों की आपसी कलह, मनमुटाव, संबंधों में खटपट और आपसी संवाद का अभाव कुंठा को बढ़ाने के कारण बनते हैं। इसके साथ अन्य व्यक्तिगत और बाहरी कारक भी विचारणीय हैं, जैसे कि परिवेश, समाज, राष्ट्र, इस तरह की घटनाएं जो परिदृश्य की भी तनाव की स्थिति में लाकर व्यक्ति को कुंठित कर सकते हैं, जिनमें रहने के लिए व्यक्ति विवश बाध्य अनुभव करता है। इसमें प्रतिकूल और विषम वातावरण की अहम भूमिका रहती है और इस तरह से अनसुलझे मुद्दे इसको हवा देते हैं। बहनों, व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक कारक कुंठा के मूल में सक्रिय रहते हैं। उद्विग्नता और अवसाद, नियंत्रण, भारत के बाहर की स्थितियाँ, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति न हो पाना, जैसा कि अभी हमने कहा था आपको कि परिस्थिति जो है सो जब अपने हाथ में नहीं रहती है और परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव और अपेक्षित योग्यता, कौशल और आत्मविश्वास का न होना, ये सब कुंठा भरी मन स्थिति का निर्माण करते हैं। गौरतलब है बहनों की कुंठा के स्वरूप और कारण के साथ यह जानना आवश्यक है कि कुंठा एक सामान्य

अन्य मानवीय भाव है और उचित उपायों के साथ इसका समाधान किया जा सकता है। समाधान के रूप में सबसे पहले तो अपने कुंठा के भाव को स्वीकार करें, इसको अनुभव करें और इसको दमित न करें। आत्मा और अस्वीकृति के साथ इसके उपचार के द्वार खोलेंगे। अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, खुद के प्रति उदारता अपनाएं, स्वकरुणा का अभ्यास करें। मानकर चले कि सभी किसी न किसी स्तर और स्थिति में कुंठा का अनुभव करते हैं। आप ही एक ऐसा अपवाद नहीं है और इसका उपचार आपके हाथ में है और आपके जागने भर की देर है बहनों, ये आपके जागते ही जो है सो इसका समाधान हो सकता है। तात्कालिक राहत के तौर पर काम या उस स्थिति से क्षणिक विराम लें जहां आप कुंठित अनुभव कर रहे हो, असहज अनुभव कर रहे हो। गहरा श्वास लें, आपको जो अच्छा लगता है उसे करें। बहनों, किन परिस्थितियों में क्या चीज़ें आपके कुंठा के भाव को जगाती है उनको पहचानें। स्वाध्याय और सत्संग पूजा पाठ करें, इससे मन विचलित नहीं होता है और इसमें बहुत सहायक आध्यात्मिक उपचार है। इनके प्रकाश में जो आपको लगेगा उससे वो आप बाहर निकल सकते हैं। कुंठा से निपटने की जो रणनीतियों के अंतर्गत अपने जीवन शैली का काम कर सकते हैं और नित्य जो है सो योग करें, व्यायाम करें, शारीरिक गतिविधियों को जीवन में स्थान दें। इसके साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही इससे आप बाहर निकल सकते हैं। साथ ही साथ बहनों, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि पर्याप्त नींद लें, समुचित विश्राम करें और अभी के समय ध्यान केंद्रित रखें और अपने कर्तव्य कर्म में व्यस्त रहें। फालतू चीज़ों पर, फालतू बातों पर ध्यान न दें। स्वस्थ जीवन शैली आपको तन मन से सशक्त कर जीवन की चुनौतियों से जूझने की सामर्थ्य देगी। इसके प्रति जागरूक रहे। इसके साथ जीवन से अपनी आशा अपेक्षाओं को व्यवहारिक बनाएं जो कि आपके लिए प्राप्य हो। बहनों, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे खंडों में तोड़ें और जो बड़े लक्ष्य हैं उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ें और परिस्थितियों के पीछे के सकारात्मक पहलू को देखने का कोशिश करें, प्रयास करें। हर घटना से आवश्यक सीख लें और फिर आगे बढ़ें। दूसरों के प्रति कृतज्ञता का अभ्यास करें। अमुक व्यक्ति ने आपके साथ जो कार्य किए हैं उनको याद करें। दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना कटाक्ष में न उलझे। ऐसे लोगों और परिस्थितियों से बचें जो कुंठा के भाव को जगाते हों और इसे और तेज करते हों। कुछ समय प्रकृति की गोद में बिताना भी एक सही उपाय कहा जाएगा, कारगर उपाय रहता है सच पूछिए तो। तो बहनों, इस तरह कुंठा एक नकारात्मक भावना है जो व्यक्ति को हताशा निराशा के गहरे भंवर में उलझा देती है। व्यक्ति जहां अनचाहे और अवांछनीय विचार भावों के मकड़जाल में कुड़ता रहता है। इसके स्वरूप को समझकर व्यक्ति से बाहर निकल सकता है, लेकिन ये खुद पर है। जी हाँ बहनों, जिसे एक मकड़ी अपने बुने जाले को समेट कर इससे बाहर निकल जाती है, वैसे ही व्यक्ति भी ऊपर बताए बातों के अनुसार अभ्यास करके इस कुंठा से के भंवर से उबर सकता है और सही सोच, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच का वर्णन करते हुए आशा उत्साह से भरा एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो बहनों, ये तो बातें हुई आपसे और अब चलिए हम चलते हैं मनोरंजन की ओर। फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बहनों, अब इस गीत के बाद आइए सुनते हैं हम एक वार्ता, मानव सभ्यता का नया अध्याय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वार्ताकार हैं जयपूर्णा विश्वकर्मा।
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मानव सभ्यता का नया अध्याय। प्रस्तावना। मानव जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। आदिकाल से ही मनुष्य ने अपने जीवन को सरल, सुरक्षित और उन्नत बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए हैं। कभी पत्थरों के औजारों का निर्माण हुआ, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद बिजली, टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे महान आविष्कारों ने संसार को बदल दिया। आज मानव जिस युग में जी रहा है वह तकनीक और डिजिटल क्रांति का युग है। इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और चर्चित तकनीक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीक नहीं बल्कि मानव सोच का विस्तार है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें मशीनों और कंप्यूटरों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सोच सके, सीख सके, निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके। आज AI ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, व्यापार, न्याय, सुरक्षा, बैंकिंग, परिवहन, मनोरंजन और संचार, हर क्षेत्र में AI का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ लोग AI को मानव जीवन के लिए वरदान मानते हैं क्योंकि इसने जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। वहीं कुछ लोग इसे चुनौती और खतरे के रूप में देखते हैं क्योंकि यह मानव रोजगार, गोपनीयता और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसलिए AI के लाभ और हानि दोनों समझना अत्यंत आवश्यक है। आज संसार डिजिटल युग से आगे बढ़ AI युग में प्रवेश कर चुका है। आने वाला समय में यह तकनीक मानव जीवन को और अधिक प्रभावित करेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम AI को केवल तकनीक के रूप में न देखें बल्कि उसे सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और मानवीय प्रभावों को भी समझें। AI क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित और इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता अर्थात ऐसी कृत्रिम प्रणाली जो बुद्धिमानी से कार्य कर सके और उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब मशीनें मानव की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने लगे तो ये उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। AI का उद्देश्य ऐसी मशीनों और कंप्यूटर प्रणालियों का निर्माण करना है जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य कर सके। ये मशीनें अनुभवों से सीखती है, डेटा का विश्लेषण करती है और समय के साथ अपने कार्यों में सुधार करती जाती है। उदाहरण के रूप में मोबाइल का वॉइस असिस्टेंट, गूगल मैप, ऑनलाइन चैटबोट, स्वचालित कारें, रोबोट, मेडिकल जांच प्रणाली, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रांसलेशन, डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षा प्रणाली इत्यादि AI के उदाहरण हैं। AI का इतिहास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विचार नया नहीं है। प्राचीन काल में भी मनुष्य ऐसी मशीनों की कल्पना करता था जो स्वयं कार्य कर सके, परंतु आधुनिक AI की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। प्रारंभिक विकास 1950 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलन टूरिंग ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मशीनें सोच सकती है। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से यह जांचा जाता है कि कोई मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है या नहीं। 1956 में अमेरिका के डॉर्टमाउथ सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनों के निर्माण पर कार्य शुरू किया जो स्वयं सीख सके। आधुनिक युग में एआई, इंटरनेट, बड़े डेटा, तेज कंप्यूटर और मशीनी लर्निंग तकनीक के विकास में एआई को नई गति दी। आज एआई केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के मोबाइल फोन और दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। एआई के प्रमुख प्रकार। नैरो एआई, सीमित एआई, इसे केवल विशेष कार्य करने के लिए विकसित किया जाता है, जैसे गूगल असिस्टेंट, चैटबॉट, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम

आज अधिकांश एआई इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा जनरल एआई, तीसरा सुपर एआई। जनरल एआई यह ऐसी बुद्धिमत्ता होगी जो मानव की हर तरह हर प्रकार का कार्य कर सके। वर्तमान में यह पूर्ण

0: आज एआई का उपयोग संसार के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई ने क्रांति ला दी है। ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास रूम, भाषा अनुवाद, परीक्षा प्रणाली इत्यादि। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई, चिकित्सा विज्ञान एआई मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। जैसे रोग पहचान, रोबोटिक सर्जरी, दवा निर्माण, स्वास्थ्य निगरानी इत्यादि। न्याय और कानून के क्षेत्र में एआई, आज एआई कानून और न्याय व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कानूनी रिसर्च, ड्राफ्टिंग, न्यायिक विश्लेषण इत्यादि। कृषि के क्षेत्र में एआई, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में एआई किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसे मौसम की जानकारी, फसल रोग पहचान, स्मार्ट सिंचाई इत्यादि। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एआई व्यापारिक क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली बन चुका है। जैसे ग्राहक सेवा, ऑनलाइन शॉपिंग, उत्पादन प्रणाली इत्यादि। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में आज बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है। ऑनलाइन लेन देन सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, निवेश विश्लेषण इत्यादि। परिवहन और सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, ड्राइवरलेस कार, सुरक्षा प्रणाली इत्यादि। मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में एआई मनोरंजन उद्योग में भी क्रांति ला रहा है। फोटो और वीडियो एडिटिंग, संगीत निर्माण, फिल्म विशेष प्रभाव, सोशल मीडिया, यूट्यूब सुझाव प्रणाली, ये सब एआई के माध्यम से संचालित होते रहे हैं। मानव जीवन पर एआई का सकारात्मक प्रभाव, समय की बचत, कार्य की सटीकता, जीवन को सरल बनाना, नई खोज का विकास, दिव्यांग लोगों के लिए सहायता। एआई के नकारात्मक प्रभाव, एआई के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे बेरोजगारी, मानसिक निर्भरता, साइबर अपराध, गोपनीयता का संकट, मानवीय संवेदनाओं की कमी। एआई और नैतिक चुनौतियाँ, एआई के विकास के साथ कई नैतिक प्रश्न भी उठ रहे हैं। क्या मशीनें मानव पर शासन करेंगी? क्या एआई मानव स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा? क्या एआई का दुरुपयोग युद्ध और अपराध में होगा? क्या मशीनें मानव निर्णय को नियंत्रित करेंगी? इन प्रश्नों का समाधान केवल तकनीक से नहीं बल्कि नैतिकता और कानून से संभव है। एआई और रोजगार, यह सत्य है कि कुछ पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो सकती हैं, परंतु एआई नए रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है। डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, एआई ट्रेनर, डिजिटल विश्लेषक। इसलिए
1: अभी आप सुन रहे थे जयपूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता, विषय था मानव सभ्यता का नया अध्याय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम से अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड उच्च न्यायालय ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी से जवाब तलब किया है।

0: न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को अगली तिथि तक स्पष्ट निर्देश और आवश्यक जानकारी के साथ अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने धनबाद स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक मोड़ मुख्य शाखा में हुए करीब 1.25 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में 2 दशक से फरार चल रहे 2 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने देशव्यापी अभियान चलाकर आरोपी ब्रजभूषण प्रसाद को महाराष्ट्र के अहमदनगर और करतार सिंह को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दबोचा है। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित निवारणपुर में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में जांच तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ते की एक विशेष टीम ने आज घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। एटीएस के अधिकारियों और जवानों ने मौके से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवघर और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को 7 अत्याधुनिक नमो एम्बुलेंस की सौगात मिली है। स्थानीय सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बाबा वैद्यनाथ की पावन नगरी शिवधाम से इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जिला टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इसमें अवैध खनन और खनिज परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले की सड़क सुरक्षा और मंडल कारा सुरक्षा को मजबूत करने की भी विस्तृत समीक्षा की गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम, कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे हरी खाद के प्रकार और उसकी खेती, साथ ही साथ आप सुनेंगे खरीफ की तैयारी और इसी कार्यक्रम के कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है मुर्गियों की देखभाल और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आइए जानते हैं हरी खाद के प्रकार और उसकी खेती। जी हाँ श्रोताओं, हरी खाद ऐसी फसल होती है जिन्हें खेत में उगाकर उनकी हरी अवस्था में ही मिट्टी में पलट दिया जाता है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हरी खाद मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने का एक सस्ता, प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल अच्छा तरीका है। इससे फसल के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है और फसल के उत्पादन में भी काफ़ी बेहतर वृद्धि होती है। हरी खाद के अगर प्रमुख प्रकार की हम बात करें श्रोताओं, तो इसमें ढीचा एक प्रमुख फसल है या उपयोग की जाने वाली हरी खाद है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा ढीचा जो है वो उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है और 45 से 60 दिनों में ही यह तैयार हो जाती है। इसके पौधों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं जो मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। श्रोताओं, इसकी कुछ विशेषताओं की बात हम करें तो जल भराव वाले भूमि में इनकी काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है। 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन यह उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। बात करते हैं श्रोताओं सनई की, तो ये भी काफ़ी एक हरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो कम समय में हरा पदार्थ को उत्पन्न करती है। 45 से 50 दिनों में ये भी तैयार हो जाती है। मिट्टी में जैविक पदार्थ ये बढ़ाती है और खर पतवार के नियंत्रण में सनई काफ़ी कारगर साबित होती है श्रोताओं। साथ ही साथ हम बात करते हैं मूंग की। मूंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रोताओं, कि एक दलहनी फसल है। हालांकि इसकी हरी खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि श्रोताओं इसकी एक विशेषता है ढेचा की तरह ही कि यह मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ाती है। कम पानी में भी इससे अच्छी उपज, अच्छी वृद्धि मिलती है। फसल चक्र में ये आसानी से शामिल भी हो जाती है श्रोताओं। और हम बात करते हैं अब लोबिया की, तो लोबिया भी हरी खाद के रूप में प्रयोग में ली जाती है। शुष्क क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयुक्त है, इससे भी जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, भूमि की संरचना में भी श्रोताओं सुधार होता है। उड़द की हम बात करते हैं श्रोताओं, तो यह नाइट्रोजन को स्थिर करने में काफ़ी सहायक साबित होती है और कम समय में यह तैयार होने वाली फसल है। इससे भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति श्रोताओं यह बढ़ती है। अब बात हम करते हैं श्रोताओं कि हरी खाद की खेती की विधि क्या है, किस तरीके से हम अपने खेतों में हरी खाद की खेती करें। इसके लिए श्रोताओं कि हरी खाद की फसल बोने से पहले खेत को एक या दो बार जुताई कर दें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो सके और खेत को समतल और खरपतवार रहित कर दें, खरपतवार का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दें श्रोताओं। बुआई का जो सबसे अच्छा जो समय है वो प्रायः देखा जाता है जून के जुलाई के महीनों में, यानी कि वर्षा के प्रारंभ होने पर इनकी बुआई की जाती है। धान की रोपाई से करीबन 45 से 50 दिन पहले इन्हें बोना काफ़ी उपयुक्त बना जाता है श्रोताओं। बीज दर की अगर हम बात करें तो ढेचा के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई के लिए 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मूंग के लिए श्रोताओं 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काफ़ी अच्छी बीज दर मानी जाती है। वहीं इसके सिंचाई और उर्वरक की हम बात करें श्रोताओं, तो प्रायः इसमें उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिंचाई की भी आवश्यकता कम ही पड़ती है। हालांकि देखा जाए तो अगर वर्षा ना हो तो एक या दो सिंचाई कर सकते हैं। और श्रोताओं, जब फसल करीबन 45 से 60 दिन हो जाए और फूल आने की अवस्था जब हो जाए तो इसे जुताई करके मिट्टी में ही मिला दें। इसके पश्चात 15 से 20 दिन तक खेत को खाली छोड़ दें, जिससे कि पौधे सड़कर गलकर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए। जी श्रोताओं, जब आपके खेत में ये हरी खाद के फसल जब लग जाते हैं और उन्हें लगने की करीबन 45 से 60 दिन हो जाते हैं, तो उस फसल को पुनः अपने खेत की जुताई करें, तो खेत की जुताई करने के दौरान श्रोताओं ये सारी फसलें जो हैं वो पुनः मिट्टी में मिल जाती है, और जुताई करने के पश्चात 15-20 दिन जो है वो अपने खेत को खाली छोड़ दें। श्रोताओं, इससे होगा क्या कि जितने भी हरे प्रकार के जो पौधे जो आपने जो हरी खाद के रूप में आपने जो लगाए थे वो सभी सड़कर गलकर खाद के रूप में मिट्टी में ही मिल जाते हैं। श्रोताओं, इससे होता क्या है कि मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जब हरी खाद जब सड़ती है तो मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता है जो हरी खाद में थे वो पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है, भूमि की संरचना और वायु के संचार में भी सुधार हो जाता है। श्रोताओं, इससे फसल के उत्पादन और गुणवत्ता में भी काफ़ी हद तक वृद्धि देखी जाती है और मिट्टी के कटाव को भी यह काफ़ी हद तक कम करती है। श्रोताओं, हालांकि देखा जाए तो पर्यावरण के संरक्षण और बेहतर और लंबे समय तक टिकाऊ कृषि के लिए भी ये हरी खाद का उपयोग काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए श्रोताओं तो हरी खाद जो है वो टिकाऊ और प्राकृतिक खेती की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जानी जाती है। इसमें ढेंचा, सनई, मूंग, लोबिया, उड़द जो है वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं और उत्पादन के लागत को कम करने में ये काफ़ी उपयोगी होते हैं। जो श्रोताओं, जब आप इस प्रकार के फसलों को लगाकर पुनः मिट्टी में मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि रासायनिक उर्वरकों की जो उपलब्ध जो जरूरत जो आपको पड़ती थी वो प्रायः कम हो जाती है। और साथ ही साथ श्रोताओं, फसल चक्र के कारण भूमि की उत्पादकता जो है वो काफ़ी बढ़ती है और इससे कृषि में लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, हरी खाद को साल में एक बार जरूर आप अपने खेतों में लगाएं और इसका लाभ देखें। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें हरी खाद के प्रकार और उसकी खेती, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है मुर्गियों की देखभाल। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम लोग बातें करेंगे स्वरोजगार की, और स्वरोजगार में बातें होंगी मुर्गी पालन की। विशेषकर हमारे बहुत से ग्रामीण भाई बहन मुर्गी पालन करते हैं लेकिन वैज्ञानिक तकनीकियाँ आप नहीं अपनाते हुए वे देख रेख नहीं कर पाते, जिससे लगाए गए पूंजी का कई गुना लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। अतः मुर्गियों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए जिससे बेहतर मुनाफा हमें प्राप्त हो सके, मुर्गियों के की जो उत्पादन और क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो सके, इन तमाम बातों से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हमारे ग्रामीण भाई बहन किस प्रकार मुर्गियाँ की देख रेख करें सर, किस प्रकार उनकी उत्पादन क्षमता जो उसमें बढ़ोतरी लाएं, इन तमाम बातों से संबंधित जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को दी जाए।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा कि कैसे किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं लेकिन किस तरह से वैज्ञानिक रूप से करें कि उनकी आजीविका बेहतर हो सके। जब उनका उत्पादन अधिक होगा तभी उनकी आजीविका बेहतर हो सकती है। इस दिशा में मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी मुर्गी पालक हैं, अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनके आवास पर ध्यान देना चाहिए। जब भी मुर्गियों के लिए आवास बनाने लगें, मुर्गी घर बनाना शुरू करें, तो आप उसे ये देख लें कि वो रोड्स के नज़दीक है कि नहीं। दूसरा, उसमें नीचे बरसात में ज़मीन में जो फर्श है वो उसमें सीलन नहीं हो, थोड़ी सी ऊँची जगह पर बनाएँ। दूसरा, ये ध्यान रखें कि बरसात के दिनों में छज्जा होता है वो 4 फीट से 9 फीट रखें ताकि बरसात का जो पानी है वो मुर्गी घर के अंदर ना जाए। और ध्यान रखना चाहिए कि बीच में जो है उसकी ऊंचाई 14 फीट के आसपास रखें, और साइड वाला दीवार है उसको 9 फीट रखें। और जब भी आप शेड बना रहे हों तो मुर्गियों के एक मुर्गी के लिए कम से कम 1 से 1.5 वर्ग फीट की ज़रूरत होती है। तो अगर मान लीजिए आपको 400 चूजे रखने हैं तो आपको 600 स्क्वायर फीट का शेड होना चाहिए। तो इस शेड में आप 30 फीट लंबा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बना सकते हैं और 20 फीट उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ा करेंगे। तो इससे 600 स्क्वायर फीट का आपका मुर्गी फार्म बन जाएगा, जिसमें कि आप 400 अंडे देने वाली मुर्गी, जिसको कि अंडे देने वाली मुर्गी को हम लोग लेयर बर्ड कहते हैं
1: जी।
2: तो आप इस 400 अंडे देने वाली के लिए आप 600 स्क्वायर फीट का घर बनाएंगे। लेकिन इसी तरह से कोई हमारे मुर्गी पालक भाई चाहते हैं कि नहीं, हम अंडे पालन करने वाली मुर्गी नहीं रखें बल्कि इसके बजाय मांस वाली मुर्गियां रखें, तो वो 500 चूजे के लिए प्रति एक स्क्वायर फीट के हिसाब से 500 चूजों के लिए 500 स्क्वायर फीट का घर बनाना होगा। तो उसके लिए वो 20 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा पूरब से पश्चिम की ओर 500 स्क्वायर फीट का सेट बनाएं, तो ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये जब ऊंचाई अधिक रखने से क्या होता है, बीच में 14 फीट रखना और साइड वाले दीवार 9 फीट रखेंगे, मुर्गी घर के अंदर गर्मी बहुत पैदा नहीं हुई गर्मी के दिनों में। और जाड़े के दिनों में आप उसमें चूंकि जाली लगाए हुए हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक देकर के हवा को रोक सकते हैं। अगर जाली आप नहीं लगाते हैं आवास में, तो चूंकि मुर्गियाँ जहाँ पर रहती हैं तो उनका लीटर है, मैंने जो हम हिंदी में कह सकते हैं उसका पेशाब और पैखाना दोनों एक साथ आता है, उसमें अमोनिया की बहुत मात्रा होती है। और अगर आप जाली नहीं देंगे तो ये अमोनिया की मात्रा अधिक होने से, ये भारी गैस है, उस स्थिति में मुर्गियों को बार बार अमोनिया लेने के कारण ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो मुर्गियाँ हाँफने लगती हैं। तो ऐसे में मुर्गियाँ जब हाँफने लगेंगी तो उनका उत्पादन घट जाएगा। तो किसान भाइयों को आवास बनाते समय इतना जरूर सुनिश्चित कर लें कि जहाँ भी आवास है वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा और बाजार की कितनी दूरी है, अगर इतना है तो आपका आवास सही है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि आप अगर मुर्गी पालन करने चल रहे हैं तो फिर हम हैं कि चूजा, तो ये चूजे दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि आप मांस के लिए मुर्गी पाल रहे हैं या अंडे देने के लिए। और तीसरा आपका विकल्प हो सकता है कि न मांस के लिए न अंडे के लिए बल्कि बीज का आप कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पहले हम बात करें मांस वाली मुर्गी, अभी मांस वाली मुर्गियां चूंकि 25 दिन में अब 1 किलो के आसपास हो जा रही हैं और लोग 35 दिनों में उसे हटा दे रहे हैं, ब्रायलर मुर्गी कर रहे हैं तो ब्रायलर का चूजा खरीदेंगे। इसी तरह से दूसरा हुआ अंडे देने वाली मुर्गियां, तो कुछ जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं वो अभी सोलोनी वगैरह हैं जो कि आपको 280 अंडे प्रतिवर्ष देंगे। ये मुर्गियाँ 4 महीने के बाद, मतलब 5 महीने के आसपास ये अंडे देना शुरू कर देती हैं, तो आपको अगले 1.5 साल तक अच्छे अंडे देती हैं। इसके बाद इनके अंडे का उत्पादन घटने लगती है, तो इन दोनों में आप डिसाइड कर लेंगे। तीसरा जो हमने कहा वो है कि आप वनराजा, वनरानी, कैरी निर्भीक, ये किस्म की जो आ रही हैं नस्लें, ये आपको लगभग 150 से लेकर 200 तक अंडे साल में देंगी। इन्हें आप थोड़ा बहुत आंगन में चरा भी सकते हैं और उससे इनको रख सकते हैं। अब आती है बात तीसरा, मुर्गियों को हम टीकाकरण कैसे करेंगे। तो टीकाकरण में है कि आपका मेरिस डिजीज की टीका जो है, जो बाजार से आप चूजा खरीदेंगे, वो एक दिन में ही वहाँ से कंपनी दे करके ही भेजती है।
1: अच्छा।
2: तो मेरिस बीमारी का टीका आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है रानीखेत, तो रानीखेत का टीका जो है सभी मुर्गियों को 3 से 4 दिन के अंदर आँख में या नाक में आपको एक एक बूंद पिला देना है, आँख या नाक में डालना है। इसके बाद आपको 21वां दिन जो है रानी खेत का, आप ये फोन हम लोग दे दिया है, अब इसके बाद हम लसोटा उसको जो है 21वां दिन पानी में घोल करके पिलाते हैं।
1: अच्छा।
2: और इसके बाद जो है मांस वाली मुर्गियां, चूंकि इनके बाद ये रहती नहीं है तो इनमें तो वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अंडे देने वाली मुर्गी को रखा है तो आपको तीसरा जो रानी खेत का वैक्सीन है वो 2 महीने पर R2B वैक्सीन हर एक मुर्गी को, जो उसका पंख है उस के डीएनए में या मांस में, आप उसको एक एक इंजेक्शन आपको देंगे तो रानीखेत से बचाव होगा। दूसरा, मुर्गियों में एक मुर्गी चेचक होता है जिसमें कि आपको कलगी में आप देखेंगे कि दाने दाने उभर जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको 2 महीने पर एक एक पंख को निकाल करके वहां पर दवा लगा दी जाती है।
1: अच्छा।
2: तो इस तरह से मुर्गियों का ये टीकाकरण कार्यक्रम हुआ। इसके बाद आता है कि हम अगर चूजे लेके आते हैं तो हमें घर में क्या करना चाहिए। जैसे चूजा आने के पहले आप ये निश्चित रूप से कर लें कि जो आपका मुर्गी घर है उसमें नीचे जो है आप लकड़ी का बुरादा जो है या चावल का कोढ़ा है उससे 2 से 3 इंच तक उसको बिछा दें पूरी तरह से, और उसके बाद जो है वो पूरे घर को आप 2 तरह से सैनिटाइज कर सकते हैं, चूना का पोचारा कर सकते हैं या फिर आप उसमें फॉर्मलिन मिला करके भी पोचारा कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ एंटीसेप्टिक्स आती हैं, उन्हें आप कोहरसोलिन TH नाम की, उसे आप 1 लीटर में 2 ml दवा मिला कर करके पूरा स्प्रे कर दीजिए दीवार पर, खिड़की पर, उसके जाली पर, ताकि वहाँ कोई और बीमारी ना हो। जब इतना हम कर लेते हैं, बायोसिक्योरिटीज कर लेते हैं, और दूसरी बात की सावधानी रखें कि जहाँ भी आप फार्म वाली मुर्गी रखे हैं वहाँ पर देसी मुर्गी ना रखें, क्योंकि देसी मुर्गियों में अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो वो आपके मुर्गियों को ग्रसित कर सकती हैं। जब आपके घर में चूजा आ गया है तो आप उसे आटे के साथ चूजे को पेपर बिछा दें, पेपर के ऊपर में जो है मुर्गियों को और बी कॉम्प्लेक्स का सिरप या लिवर टॉनिक का सिरप आप 1 लीटर पानी में 5 से 7 ml मिला कर करके जो मुर्गी का पिलाने का बर्तन है उसमें उसको दे दें। साथ में आप तुलसी के छोटे छोटे मुलायम पत्ते भी दे सकते हैं। इस तरह से जब आप एक दिन उसको, मुर्गियाँ जब भी अंडे देती हैं तो उनके 72 घंटे के बाद ही उनको भोजन देना होता है
1: जी।
2: तो आप उस 72 घंटे कंपनी के रिकमेंडेशन के हिसाब से देखने के बाद तब भोजन आप देना शुरू करें। ये भोजन देने में आपको ध्यान रखना है कि 3 तरह का मुर्गियों का भोजन होता है। एक स्टार्टर हम लोग बोलते हैं जो हम लोग पहला दिन से 10वां दिन तक देते हैं, इसके बाद ग्रोवर देते हैं 10 से 20 दिनों तक, और 20 दिनों के बाद जो है हम लोग उसको फिनिशर राशन बोलते हैं, या आप लेयर मुर्गी में कहिएगा तो लेयर राशन कहलाएगा। पहला जो हम लोग ने स्टार्टर देते हैं उसमें हमारा जो प्रोटीन का ये होता है वह लगभग 23 से 24% होता है, और प्री स्टार्टर में जो है 21 से 22% होता है, और फिनिशर में 19 से 20% प्रोटीन होता है। इसी तरह से इसमें एनर्जी जो है प्री स्टार्टर में 2900 किलो कैलोरी होगा, स्टार्टर में जो है 2950 किलो कैलोरी होगा, और फिनिशर में जो है 3000 किलो कैलोरी होता है
1: जी।
2: तो ये भोजन हो गए। इसके बाद हम जब मुर्गियों को लाते हैं तो मुर्गियां चूंकि जाड़े के दिनों में खास करके जब लाते हैं तो उन्हें मुर्गी उनके साथ नहीं होती तो उनको गर्मी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ब्रूडर व्यवस्था करते हैं। तो ब्रूडर में आप बल्ब जला करके देखना है आपको कि अगर आपका बल्ब का पावर सही है और 95 डिग्री फॉरेनहाइट अगर रूम का टेम्परेचर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि बल्ब लगाइए और ब्रूडर के घेरा बनाइए और घेरा बना करके देखिए कि अगर आपकी चूजे जो बच्चे हैं अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि उन्हें ठंड लग रही है, तो आप पावर बढ़ा दीजिए। और अगर लगता है कि नहीं जहाँ बल्ब जल रहा है उससे दूर दूर आपके चूजे जा रहे हैं तो इस स्थिति में आप बल्ब के पावर को कम कर दीजिए ताकि उनको लग रहा है कि ज़्यादा गर्मी लग रही है तो किनारे भाग रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात की ये सावधानी रखने के लिए कि जाड़े के दिनों में थोड़ा पानी तो सभी दिनों सालों भर आपको साफ पानी पिलाना है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो कोशिश करिए कि 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो। गर्मी के दिनों में अगर बहुत गर्म पानी देंगे तब भी वो नहीं पिएगा, और जाड़े के दिनों में ठंडा पानी होगा तब भी नहीं पिएगा, तो इसको टेम्परेचर को निश्चित रूप से मेंटेन करने की कोशिश करें। और गर्मी के दिनों में 2 बार पानी को बदलें, और जाड़े के दिनों में 1 बार पानी का बर्तन को साफ करके बदल दिया करें। इस तरह से मुर्गियों में 7 दिन पर ही सफाई का ये किया जाता है, ऐसे ब्रॉयलर मुर्गी में तो हम लोग 1 बार ही ये करते हैं सफाई जैसो, क्योंकि हम लोग का उस फार्मूला ये है कि ब्रॉयलर मुर्गी रखे हुए हैं तो आप एक साथ ही 600 के 600 मुर्गी को बेच दीजिए और फिर नया का नया पूरा डालिए। इसको ऑल इन ऑल आउट कहता है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर उसमें से कोई बीमारी है भी तो वो साथ बाहर जाएगी, और जो नई मुर्गी आएगी उसको हम सैनिटाइज करके करेंगे तो हमको दूसरी मुर्गियों में बीमारी नहीं फैलेगी। तो इसलिए ऑल इन ऑल आउट जो है यही बेस्ट अभी माना जा रहा है। इस तरह से किसान भाई अगर करेंगे, और दूसरी बात आती है अंडे देने वाली मुर्गी, तो आप अंडे देने वाली मुर्गी को 4 महीने के बाद आप रखते हैं तो उसमें अगर लाइट की व्यवस्था अच्छी रखते हैं, लाइट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था दोनों मुर्गियों में ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्रॉयलर मुर्गी है अगर उसे लाइट अब 14 घंटे देंगे तभी वो भोजन करेगी और जल्दी जल्दी अपना वजन गेन करेगी, बढ़ाएगी। इसी तरह से अंडे देने वाली मुर्गियों में भी अगर 14 घंटे का आप लाइट देते हैं तो उनका भोजन वो ज़्यादा लेंगे और उनके अंडे भी अच्छे आएंगे और अधिक मात्रा में उत्पादित होती। इसी तरह से इनमें कुछ बीमारियां हैं जैसे कोक्सीडियोसिस की बीमारी है, तो आपके इस स्थिति में अगर आपके यहाँ पतला दस्त हो रहा है और उसमें लाल पैखाना हो रहा है तो ये कोक्सीडियोसिस है, तो आप अपने डॉक्टर से जो नज़दीक में पशु चिकित्सक हैं प्रखंड में या अस्पताल में उनसे मिल करके आप एम्प्रोलियम या फिर सल्फा मेथोक्साजोल विथ टाइमोथोप्रीम की दवा आती है आप उसे दे सकते हैं। इसी तरह से अगर मुर्गियों में सर्दी होती है तो आप सिफेलेक्सिन पाउडर आता है घोल करके, या इनरोफ्लोक्सासिन का भी आता है उसे घोल करके आप मुर्गियों को पिला सकते हैं। तो ये आप अपनी जानकारी किसान भाई अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ ग्रामीण भाइयों, जी हाँ किसान भाई बहन, बातें हो रही थी मुर्गियों की देखभाल हम किस प्रकार से करें कि ताकि हम ज़्यादा उत्पादन ले सकें, मुर्गियों से अंडे ज़्यादा उत्पादित कर सकें और मालामाल हो सकें। जी हाँ किसान बंधु, और मुर्गियों की देखभाल किस प्रकार करें, किस प्रकार उत्पादन बेहतर रूप से प्राप्त करें, इन तमाम बातों पर जानकारियां साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में थे पलामू जिला के आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। सर, आप कार्यक्रम में आए और हमारे ग्रामीण भाइयों को मुर्गी पालन से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रमोद कुमार से लिखी भेंटवार्ता, विषय था मुर्गियों की देखभाल और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आइए जानते हैं खरीफ फसल की तैयारी। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल मौसम के अनुसार से ली जाती है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से बोई जाती है और इसकी जो बुआई है प्रायः जून जुलाई के मानसून के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है। कटाई सितंबर से नवंबर माह के बीच की जाती है और इसमें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और रहर जैसे प्रमुख खरीफ फसलें ली जाती है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खरीफ मौसम से पहले उचित तैयारी भी जरूरी है श्रोताओं, और इसमें सर्वप्रथम हम ध्यान बात करेंगे खेत की तैयारी की। जी हाँ श्रोताओं, खरीफ फसल की सफलता के लिए खेत की उचित तैयारी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें खेत की गहरी जुताई करने की आवश्यकता होती है जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो सके, खरपतवार तथा कीटों के जो भी अंडे हैं वह इसमें नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात 2 से 3 बार हल्की जुताई और पाटा लगाकर खेत को समतल करें। समतल खेत में वर्षा का पानी समान रूप से फैलता है और जल का संरक्षण भी अच्छे से होता है। साथ ही साथ मिट्टी की परीक्षण, जी हाँ श्रोताओं, निरंतर फसल लेने से मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की जो है वह कमी हो जाती है, तो ऐसे में मिट्टी का परीक्षण जरूरी हो जाता है श्रोताओं, और इससे यह पता चलता है कि हमारे भूमि में कौन कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता है और किसकी कमी है, और इसी के आधार पर उचित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें। इससे उत्पादन के लागत में भी कम आती है और फसल की पैदावार भी श्रोताओं बढ़ती है। खरीफ फसल में हमेशा उन्नत बीजों का ही चयन लाभदायक होता है। जी हाँ श्रोताओं, ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रमाणित और उन्नत किस्म के बीज को ही लें। स्थानीय जलवायु, मिट्टी और वर्षा के अनुसार ही बीजों का चुनाव करना जरूरी हो जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की अंकुरण की क्षमता भी ज़्यादा होती है और वे रोगों और कीटों के प्रति भी ज़्यादा सहनशील होते हैं। तो श्रोताओं, हमेशा जब भी आप अपने खेत में बुआई करें तो उन्नत बीज का ही और प्रमाणित बीज ही लें। बुआई से पहले बीजों का उपचार करना जरूरी है। बीज उपचार से बीज जनित जो भी रोग या कीट होते हैं उनसे बीज को सुरक्षा प्राप्त होती है श्रोताओं, साथ ही साथ अंकुरण भी बेहतर होता है, फसल की अच्छी वृद्धि भी होती है श्रोताओं। जैविक खाद और उर्वरक का प्रबंधन, जी हाँ श्रोताओं, खरीफ फसल की तैयारी के साथ साथ खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना लाभदायक होता है। इससे मिट्टी की उर्वरकता और जल धारण की क्षमता बढ़ती है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। खरीफ फसल मुख्य रूप से देखा जा सकता हो तो वर्षा पर ही निर्भर होती है, इसलिए खेत में वर्षा जल की संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मेड़बंदी, खेत का समतलीकरण और वर्षा जल संचयन जैसे उपाय को भी लागू करना लाभदायक हो जाता है। ज़्यादा वर्षा होने पर जल निकास की भी उचित व्यवस्था रखना जरूरी है, क्योंकि जल भराव से फसलों की जो जड़ें हैं वो प्रभावित होती है और इसका कहीं ना कहीं उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवार भी श्रोताओं फसल के साथ साथ पोषक तत्व, पानी और प्रकाश के प्रति प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता करते हैं। इससे खरीफ मौसम शुरू होने से पहले ही खेत की सफाई और खरपतवार का नियंत्रण करने की योजना बना लें। समय पर निराई गुड़ाई और आवश्यकता अनुसार खरपतवार नाशी का प्रयोग करें और इस बात को सुनिश्चित कर लें कि किसी भी तरह अपने खेतों में खरपतवार का नियंत्रण होना जरूरी है। खरीफ के मौसम में श्रोताओं, ज़्यादा नमी होने के कारण कई प्रकार के कीट और रोग तेजी से फैलते हैं, इसलिए इन दिनों फसल की निगरानी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो श्रोताओं, खरीफ के मौसम में कोशिश करें, प्रयास करें कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही चयन करें, बीज को बीजोपचारित करें, फसल चक्र को अपनाएं, जैविक नियंत्रण के ही उपाय को अपनाने का प्रयास करें और जरूरत पड़ने पर अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर कीटनाशकों का उपयोग करें। श्रोताओं, बुआई शुरू होने से पहले ट्रैक्टर, हल, सीड ड्रिल, पंप सेट और अन्य जो भी कृषि यंत्र हैं उनकी अच्छे तरीके से मरम्मति और रख रखाव कर लें, जिससे कि समय पर इनका भरपूर लाभ लिया जा सके। खरीफ की जो खेती होती है श्रोताओं, वो पूर्ण रूप से मानसून पर ही निर्भर करती है, इसलिए मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी नियमित रूप से लेते रहे। वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखकर ही बुआई का समय और फसल का चयन करें, इससे उत्पादन भी ज़्यादा होता है और जोखिम भी श्रोताओं को प्रायः कम हो जाता है। तो देखा जाए श्रोताओं, तो खरीफ की फसल की अच्छी पैदावार के लिए समय से खेत की तैयारी, मिट्टी की परीक्षण, उन्नत बीजों का चयन, बीज की उपचार, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जल संरक्षण, खरपतवार पर नियंत्रण, साथ ही साथ कीट और रोग का प्रबंधन जरूरी है, आवश्यक है श्रोताओं। और वैज्ञानिक ढंग से यदि खरीफ की तैयारी की जाए तो इससे उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ यह ज़्यादा लाभकारी और टिकाऊ भी होते चला जाता है। तो श्रोताओं, बेहतर उपज और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए समयानुसार खेती की पूरी तैयारी करना आवश्यक हो जाता है। तो श्रोताओं, अब इसी चर्चा के साथ आज की इस खेती बाड़ी सभा में दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीणों को सम्मिलित कार्यक्रम खेती बारी, और अब ये सुनते हैं कृषकों को सम्मिलित हमारा कार्यक्रम ग्रामीण सभा। तो आज के ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है, सभी को पुनः कल्याण कुमार का नमस्कार जोहर। श्रोताओं, आज के इस ग्रामीण सभा कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप सुनेंगे मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी। आज की बात का विषय है अंतर्वर्ती खेती से लाभ। भेंटवार्ता में आप सुनेंगे मोटे अनाजों में शामिल फसलें एवं उसकी वैज्ञानिक खेती। भेंटवार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार, और आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे श्रोताओं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए ये जानते हैं मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी। जी हाँ श्रोताओं, मछली पालन कृषि और पशुपालन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार है, व्यवसाय है, जो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई को अतिरिक्त आय और रोजगार देता है। सफल मछली पालन के लिए तालाब की उचित तैयारी बहुत ही जरूरी है। तालाब की यदि वैज्ञानिक ढंग से तैयारी की जाए तो मछलियों की वृद्धि भी तेजी से होती है और रोगों की संभावना भी स्वतः प्राय कम हो जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं उत्पादन और लाभ दोनों में वृद्धि होती है। तो स्वतः जब भी आप अपने खेत तो जब भी आप मछली पालन की बात करें तो खेत की तैयारी वैज्ञानिक ढंग से ही करें। इसमें इस बात को सुनिश्चित करें कि तालाब का चयन आप कैसे करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मछली पालन के लिए ऐसी जगह का चयन करें जहां वर्षा भर पर्याप्त पानी की उपलब्धता हो, तालाब की भूमि चिकनी या दोमट मिट्टी की हो, क्योंकि ऐसी मिट्टी पानी को लंबे समय तक रोक कर रखती है। तालाब ऐसे स्थान पर लें या बनाएं जहां पर बाढ़ का खतरा कम हो, जल भराव और जल निकासी की उचित व्यवस्था उपलब्ध हो। तालाब की सफाई का भी होना आवश्यक है श्रोताओं। मछली पालन शुरू करने से पहले तालाब की अच्छे तरीके से सफाई करें। तालाब में मौजूद खरपतवार, झाड़ी, पत्थर, कूड़ा, कचरा या जो भी अवांछित पदार्थ हो उन्हें निकाल दें। इससे तालाब का जो वातावरण है स्वच्छ रहता है और मछलियों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है वो बनती है। श्रोताओं, यदि तालाब पुराना है तो उसमें मौजूद पानी को निकाल कर कुछ दिनों के लिए उस तालाब को सूखने के लिए भी छोड़ दें। तालाब को सूखने से हानिकारक जो भी जीव, कीट या रोगजन्य जो भी सूक्ष्म जीव होंगे या अवांछित मछलियां जो होंगी वह नष्ट हो जाएंगी। इससे नई मछलियों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार होता है। तालाब में मौजूद मांसाहारी या अवांछित मछलियां नहीं डाली जाने पर मछलियों के बच्चों को नुकसान हो सकता है श्रोताओं। इसलिए पहले से मौजूद मांसाहारी या जो भी मछलियां हैं उन्हें हटाना जरूरी है। तालाब को सुखाकर और वैज्ञानिक विधि से उपयोग करके ही इस पर नियंत्रण करें। तालाब की मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए चूने का उपयोग करें। चूना पानी की अम्लता को कम करता है और रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को भी स्वतः नियंत्रित करने में काफी सहायक साबित होता है। साथ ही साथ मिट्टी की स्थिति के अनुसार ही इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें कितना चूना प्रति हेक्टर के हिसाब से देना है। प्रायः देखा गया है श्रोताओं कि 200 से 500 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टर के हिसाब से उपयोग में लाया जाता है। तालाब में प्राकृतिक भोजन उत्पन्न हो इसके लिए गोबर की सड़ी हुई खाद या जैविक और साथ ही साथ रासायनिक उर्वरक का भी उपयोग करें। इससे तालाब में पलवक काफ़ी विकसित होते हैं जो मछलियों का प्राकृतिक भोजन है। पर्याप्त प्राकृतिक भोजन मिलने से मछलियों की वृद्धि तेजी से होती है श्रोताओं। तालाब में साफ और प्रदूषण रहित ही पानी भरे, पानी धीरे धीरे भरे जिससे कि तालाब में प्राकृतिक जैविक गतिविधियां जो है वो विकसित हो सके। तालाब में 1.5 से 2 मीटर तक ही पानी की गहराई मछली पालन के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है श्रोताओं। 1.5 से 2 मीटर ही अपने तालाब में पानी रखें। मछलियों के स्वस्थ विकास के लिए पानी की गुणवत्ता बहुत ही जरूरी है श्रोताओं। इसलिए पानी में पर्याप्त घुलित ऑक्सीजन का होना जरूरी है और उसका तापमान, अम्लीयता दोनों का संतुलित होना भी आवश्यक है। समय समय पर पानी की जांच करें और सतो मछली बीज फिंगरलिंग का संचयन। जी हाँ सतो, जब तालाब अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले ही मछली बीज छोड़े, बीज विश्वसनीय स्रोत से ही ले। कई प्रकार की प्रजातियों को मछलियों को संतुलित अनुपात में डालने से तालाब के सभी स्तरों का बेहतर उपयोग होता है और उत्पादन बढ़ता है। श्रोताओं, तालाब की मेढ़ों को मजबूत रखें जिससे कि पानी का रिसाव भी न हो, मछलियों की चोरी न हो। पंछियों तथा अन्य शत्रुओं से बचाने के लिए भी आवश्यक सुरक्षा के उपाय जरूर रखें। तालाब के चारों ओर बाड़ लगाएं और निगरानी हमेशा करते रहें, क्योंकि निगरानी करने से काफी लाभ आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ श्रोताओं, तालाब की तैयारी से भी कई प्रकार के लाभ होते हैं। मछलियों को जीवित रहने की क्षमता जो है वो काफ़ी इसमें बढ़ जाती है, मछलियों की वृद्धि तेजी से होती है। रोग और परजीवों का भी प्राय प्रकोप जो है श्रोताओं वो काफ़ी कम हो जाता है। प्राकृतिक भोजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी बढ़ती है, उत्पादन और लाभ में भी वृद्धि होती है और पानी की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। श्रोताओं, मछली पालन वैज्ञानिक तरीके से करें जो कि काफ़ी टिकाऊ और लाभकारी होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए श्रोताओं, तो मछली पालन की सफलता के लिए तालाब की वैज्ञानिक तैयारी का होना जरूरी है। तालाब की सफाई, उसे सुखाना, चूना, खाद का प्रयोग, पानी की गुणवत्ता, स्वस्थ मछली बीजों का चयन, साथ ही साथ प्रत्येक मत्स्य पालक को भी श्रोताओं, मछली पालन शुरू करने से पहले तालाब की उचित तैयारी जरूर करनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और हो सके श्रोताओं तो मछली पालन से संबंधित संपूर्ण बातों की जानकारी पूर्व से ही प्राप्त कर ले, उसके बारे में प्रशिक्षण ले लें और तब मछली पालन करें। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे श्रोता भाई हैं जो मछली पालन कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में या समयानुसार मछली पालन से संबंधित नए बातों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण भी लेते रहें जिससे कि बेहतर आप मछली का उत्पादन कर सके। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है मोटे अनाजों में शामिल फसलें एवं उसकी वैज्ञानिक खेती। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। जी हाँ किसान भाइयों, हम बहुत सारी फसलों की बातें आपसे करते हैं, ढेर सारी योजनाओं की बात करते हैं, तरह तरह की बातें किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपसे साझा करते रहते हैं। आज हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की। जी हाँ, जिसकी आज आवश्यकता है और सरकार इस पर बहुत बल दे रही है ताकि हमारे किसान भाई मोटे अनाजों की खेती करके वो देश को स्वस्थ रख सकें और अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकें। और मोटे अनाजों में कौन सी फसलें मुख्यतः शामिल हैं और इसकी वैज्ञानिक खेती हम कैसे करें, इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारी बातें हैं मोटे अनाजों से संबंधित। इस विषय पे संबंधित आज हम विस्तृत जानकारी साझा करेंगे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि हमारे किसान भाई मोटे अनाजों में किसको शामिल कर सकते हैं।
2: किसान भाई, मोटे अनाज का मतलब आप लोग जान जाए कि इसमें ज्वार, बाजरा, रागी और फॉक्सटेल बाजरा की चार चीजें आती है मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारे कोदो, सावा, आप लोग पलामू, लातेहार, गढ़वा के आसपास के किसान हैं तो ये जानते होंगे कि पहले लोग जो अनाज करते थे तो सावा, कोदो, ये सब चीजों की भी खेती करते थे। और ज्वार जिसको हम लोग बात कर रहे हैं उसको आप लोग जिनोर भी बोलते हैं। तो जिनोर, बाजरा, रागी और फॉक्सटेल मिलेट, इसके जो हम अब इसकी चर्चा करते हैं कि जो ये फसलें जो होती हैं, इस फसल में सभी जगह इसकी खेती की जा सकती है और खास करके इस फसल में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन हम लोग बार बार सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन, मौसम हमारी पलामू की कम वर्षा हो रही है, ज़्यादा तापमान हो रही है, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा वर्षा हो रही है, कभी कम वर्षा, इसी को जलवायु परिवर्तन करते हैं। और ये जलवायु परिवर्तन में आप ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, ये सब की खेती बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं और इसकी जो है पानी की भी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, कम पानी में ये फसलें होती है, और इसके लिए मिट्टी भी बहुत अच्छी मिट्टी नहीं चाहिए। आप जब देखते हैं टाण वाली मिट्टी जिसमें बहुत अच्छा उपजाऊ नहीं है, उस सब चीजों के लिए आप जो है ज्वार बाजरा की खेती करेंगे तो उसके लिए उपयुक्त है, और इसमें जो है कार्बन का उत्सर्जन कम भी होता है। इस फसल में और फसलों की तुलना में उर्वरक की मात्रा कम लगती है, तो हम उर्वरक से भी बच जाएंगे। और पूरे भारत वर्ष में मिलेट का जो ज्वार बाजरा का उत्पादन है, इसमें हमारा जो देश है जो है ये जो है बहुत अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले नंबर पे आता है, और रागी कुटकी और इस सब के क्षेत्रों में झारखंड का जो है छठा स्थान पूरे अपने राष्ट्र में है। तो हम लोग देखें भाई किसान भाई कि बाजरा के इसके फायदे क्या है। हमारे प्रधान माननीय प्रधानमंत्री ने 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जो है बाजरा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है। ये हमारा प्रस्ताव, भारत ऐसा देश है जो इसने विश्व पटल पर प्रस्ताव को रखा और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति की गई, और 75 से 90 देशों ने इसकी जो है मनाने का इसमें हाँ में हाँ मिलाई भारत का, और ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये हमारे लिए बहुत, भारत वर्ष के सभी लोगों के लिए खुशी का विषय है कि इसको जो है 2023 को हम लोग बाजरा दिवस के बाजरा ईयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हालांकि किसान भाई आप देखते हैं कि हम लोग जो पहले तीन तरह के ग्रेन होते हैं, एक होता है कि निगेटिव ग्रेन, किसान भाई निगेटिव ग्रेन धान और चावल को बोलते हैं क्योंकि इससे खाने से आदमी बीमार पड़ते हैं
1: जी जी,
2: और कुछ ग्रेन होते हैं जो कि न्यूट्रल ग्रेन होते हैं जिसको खाने से जो है हम ना स्वस्थ भी ज्यादा रहते हैं, और अगर अस्वस्थ है तो स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके खाने से अस्वस्थ नहीं होते, जैसे हमारा जो है ज्वार वगैरह हो गया, और रागी मिलेट्स ये सब जो है उसको पॉजिटिव ग्रेन बोलते हैं, यानी कि अगर पहले से हमें कोई रोग है तो उस रोग को ये सभी के आटा खाएंगे या इन सभी के प्रोडक्ट खाएंगे, दलिया खाएंगे, तो आपको ये स्वस्थ भी रहेंगे, और जो कोई पहले से भी बीमारी है उसको भी ठीक करने की क्षमता इन मोटे अनाजों में है। और हम लोग देखते हैं किसान भाई कि मोटे अनाजों को हम लोग गेहूं के आटा को पहले मानते थे कि ये अच्छा चीज है चावल की तुलना में, लेकिन गेहूं के आटा में ग्लूटीन नामक तत्व होने के चलते वो तुरंत हमारे शरीर में जैसे ही जाता है घुल जाता है, और शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अमूमन आप लोग चीनिया रोग जिसको बोलते हैं, शुगर की मात्रा बढ़ गई तो इसके खाने से बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर शुगर की शिकायतें आ रही हैं। तो हम लोग अगर मोटे अनाज की बात जिसको कहते हैं ज्वार बाजरा रागी जो हमारे 70 के दशक से पहले लोग अपने खेतों में करते थे, और बीच में गेहूं को हम लोग खाना शुरू कर दिए क्योंकि गेहूं के अनाज में जो है ग्लूटीन होने के चलते थोड़ा सा हमारा मुलायम हो गया, रोटी खाने में मुलायम हो गया, तो हमारा जीभ का टेस्ट हमने देखा, लेकिन इससे बीमारियां हमारी बढ़ती गई। तो मैं यही कहूंगा कि ज्वार बाजरा का जो है इसमें जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 52 है, और गेहूं के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, यानी कि हमारा जो है ज्वार बाजरा खाने से बहुत ज्यादा अच्छा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारा है। तो किसान भाई इसमें देखिए एंटीऑक्सीडेंट है, प्रचुर मात्रा में विटामिन है, आयरन है, मिनरल्स है, हम जो खाना खाते हैं हमारा पोषक तत्व जो है ये पोषण के लिए भारत सरकार ने इसको जो कहा है कि हम इसकी एमएसपी को बढ़ा दिए, एमएसपी भी भारत सरकार आपको जो खरीदेगी तो ये ज्यादा रेट पे खरीदेगी, और साथ साथ हमारे जो जितने भी राशन के दुकानों में या मिड डे मील स्कूलों में है, अपने माननीय प्रधानमंत्री और झारखंड सरकार भी इस दिशा में हमारे कदम उठा रही है कि इसको वहां तक भी पहुंचाना, उपलब्ध कराने की बात हो रही है, इसके फायदे इतने हैं, तो हम लोगों को शुगर की बीमारी भी नहीं होगी, हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट है और हम एंटी कैंसरस है, इन सारे फायदों के हो रही है अगर हम मिलेट की खेती करते हैं। और हमने देखा कि ये सारी खेतियों के अगर हम करते हैं तो ये सारे हमको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितने फायदेमंद है। अब रही हम लोग जो किसान भाई की जो पलामू ऐसे क्षेत्र में है जहाँ की कम वर्षापात होती है, और कम वर्षापात में इन फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट कम है, यानी कम पानी और खराब मिट्टी में ये हो जाती है, तो जरूरत है इन फसलों की करने की। जैसे कि हम लोग ज्वार की अगर खेती करते हैं किसान भाई खरीफ के मौसम में, तो ज्वार के साथ अगर अरहर दे देते हैं कितनों पलामू में, पिछले बार देखिए धान का रोपा आप लोग के यहाँ 5% पूरे पलामू में गढ़वा में हुआ, यानी कि हम लोग पानी के अभाव में धान की खेती नहीं कर पाए, जिससे हमारा मनुष्य का तो अनाज नहीं पूर्ति हुआ और जानवरों का चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इसमें दोनों चीजों में क्या है कि आपको चारा भी बहुत मिलेगा जानवरों के लिए और अनाज भी मिलेगा। तो ज्वार की अगर खेती करते हैं वैज्ञानिक तरीके से तो हम लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा फायदा है। 110 से 115 दिन की फसल है और इसका बीज दर जो है ये 12 kg प्रति हेक्टेयर, यानी 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में लगाएंगे अपलैंड में, टाढ़ भूमि में, जिस तरह आप मक्का को लगाते हैं, तो इस मक्के को लगा के आप करेंगे तो हमको जो है ज्वार की खेती, जिसको जिनोर भी आप बोलते हैं, तो इसे घबराना नहीं है कि हमको जिनोर है, और इसमें उर्वरक की भी जो कम मात्रा लगती है 60-40-20 की रहती है, तो 110 से 115 दिन की है। और इसे सबसे खास बात यह था कि किसान भाई इससे जो चारा जो है 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये अनाज के साथ चारा भी हमको मिलता है।
1: किस्में क्या होंगे
2: इसके? 20 से, हाँ इसके किस्में है, CSB 17 है, CSB 20 है, SG 998 है, और CO 29 जो है ये चारे के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त है। ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में भी हम लोग इसका बीज का उत्पादन करते हैं, और कितना भी कम वर्षा हो तो ये फसलें होना निश्चित है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कभी कभी कि इसके खेती जो है अरहर के साथ भी आप करते हैं, अरहर और ज्वार के साथ में, एक लाइन अरहर एक लाइन ज्वार, या दो लाइन अरहर दो लाइन ज्वार, तो आपको क्या होगा किसी विषम परिस्थितियों में अगर खूब पानी नहीं पानी यहाँ पड़ा तो आपकी ज्वार की फसल होना निश्चित है और अरहर की फसल होना निश्चित है। अगर अगर हम लोग जो है ज्वार अगर फसल हो गए तो कम से कम हम भूखे नहीं मरेंगे, ज्वार की आटा खाएंगे, तो आप इसमें रोग और व्याधियां भी कम लगती है। तो हम लोग किसान भाई इसकी खेती को हम लोग जो है चारे के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे किसान भाई इसकी ज्वार की जब भी कटाई करेंगे तो 45 दिन के अंदर किसानों को चारा के रूप में नहीं खिलाना है, यानी जानवरों को 45 दिनों के बाद खिलाएं, या फिर अगर आप पटवन सुविधा हो रही है, बारिश हो रही है अच्छी, तो फिर आप खिला सकते हैं, नहीं तो इसमें एक जहरीला तत्व भी रहता है जो कि पानी की कमी के चलते एसियन का फॉर्मेशन होता है। तो हम आपको सावधान करते हैं कि 45 दिनों के बाद ही चारे के रूप में इसको काट के आप जानवरों को खिलाएं, और अगर हम लोग अनाज के रूप में लेते हैं तो अनाज के रूप में ये जो फसलें हैं 25 से 30 क्विंटल हमको जो है ज्वार की पैदावार प्रति हेक्टेयर होगी। तो आप ज्वार की खेती, और सरकार जब इस पर आपको MSP ज़्यादा दे रही है, खरीदने का वादा दे रही है, के दुकानदारों में सप्लाई करने की बात कर रही है, तो हम लोग ज्वार की खेती करके भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: एक बात हम ये जानना चाहेंगे, अभी हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे कर रहे?
2: हाँ किसान भाई, अभी मई का महीना हमारा जो चल रहा है, अब कोई किसान अगर गर्मा जुताई नहीं किए हैं तो आप अपने खेतों में गर्मा जुताई कर दें। सबसे उपयुक्त समय ये होता है कि अगर गर्मी के दिनों में अप्रैल महीना में देखे होंगे कि बारिश कुछ हुई थी, तो जस्ट बारिश खत्म होने के बाद अपने खेतों में जुताई कर दें। अगर गर्मा जुताई कर देते हैं तो कीट वगैरह का प्रकोप सब खत्म हो जाएंगे, घास खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद अगर खेतों में थोड़ा जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे ही जून जुलाई के महीना आएंगे, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इसका उपयुक्त समय लगाने का होता है, तो आप इसके जो है लगा सकते हैं। और घास निकालने के लिए हम लोग एट्राजीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हमारे पास में घास की समस्या आती है, तो ये सारी फसलों को अगर करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो हम लोग करते हैं। तो हम यही सलाह देते हैं कि पलामू में पहले ज्वार बाजरा मोटे अनाज, इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमको जो है गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्य लाभों के साथ में तो आप लोग जरूर ज्वार बाजरा की खेती कीजिए। सरकार इसके लिए मोटे अनाजों के लिए जिला कृषि कार्यालय में बीज की भी व्यवस्था कर रही है झारखंड सरकार के द्वारा, और इसको प्रोत्साहित करने के लिए जिला कृषि कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस मना रहा है, और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण पाकर इसकी खेती हम लोग बीज उत्पादन का करते हैं। जो किसान भाइयों को जो हमने प्रभेद बताया, पुनः बता दें CSB 17 और CSB 20, ये जो प्रभेद जो है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र से अगले वर्ष, इस साल तो नहीं, अगले वर्ष उपलब्ध होगा। आप बड़े पैमाने पर यहाँ से अच्छे बीजों को लेकर आप अपने यहाँ खेती कर सकते हैं
1: जी। और इस प्रकार से हमें जो उम्मीद है कि हमारे किसान भाई अगर इसकी खेती करेंगे तो जिस तरह से इसकी मांग बढ़ रही है निश्चित रूप से वो भरपूर लाभ कमाएंगे।
2: हाँ।
1: आप थे पलामू जिला क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी आशुतोष, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता, विषय था मोटे अनाजों में शामिल फसलें एवं उसकी वैज्ञानिक खेती। और भाई जानते हैं अंतर्वर्ती खेती से लाभ। जी आशुतोष, अंतर्वर्ती खेती यानी कि इंटरक्रॉपिंग, यह कृषि की वो प्रणाली है, वो सिस्टम है, वो पद्धति आशुतोष, जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से ज़्यादा फसलों की वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है। इसमें मुख्य फसल के साथ सहायक फसल निश्चित दूरी और अनुपात में खेतों में लगाई जाती है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं श्रोताओं, मक्का के साथ अरहर की खेती, गन्ने के साथ आलू तथा कपास के साथ मूंग या फिर उड़द की खेती की जा सकती है। इसमें श्रोताओं जोखिम कम, उत्पादन ज़्यादा और भूमि की उर्वरकता बनाए रखने में भी

यह अंतर्वर्ती क्रॉपिंग या खेती काफी लाभदायक है। अंतर्वर्ती खेती से स्वतः भूमि का बेहतर उपयोग होता है, खेत के प्रत्येक भाग का समुचित उपयोग होता है, फसलों की जड़ें जो हैं अलग अलग गहराई तक जाती है, पोषक तत्वों का वो भी उपयोग जो है वो अलग अलग स्तर से होता है, तो भूमि की उपजाऊ क्षमता भी स्वतः निश्चित रूप से इसमें बढ़ती है। एक ही खेत से एक से ही अधिक फसल प्राप्त होने के कारण उत्पादन भी बढ़ जाता है। फसल की उपज यदि किसी कारणवश कम हो किसी एक फसल की, तो दूसरी फसल से इसकी भरपाई हो जाती है। एक ही समय में कई प्रकार की उपज प्राप्त होती है स्वतः इस अंतर्वर्ती खेती में, जिससे कहीं ना कहीं आय के स्रोत बढ़ते हैं। बाजार में किसी एक फसल का मूल्य कम होने पर भी दूसरी फसल से ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाते हैं। सूखा हो, बाढ़ हो, कीट हो या रोग के कारण यदि एक फसल प्रभावित भी हो जाए, उससे कम उत्पादन प्राप्त हो सकता हो, तो दूसरे फसल से आर्थिक लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रोताओं, अंतर्वर्ती खेती जोखिम कम करने का एक सशक्त प्रभावी माध्यम है। श्रोताओं, विभिन्न फसलों को एक साथ लगाने से खेत का ज्यादातर जो भाग है वो ढका रहता है। इससे खरपतवार को बढ़ने में भी कम स्थान मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप खरपतवार की जो समस्या भी है वो भी कम हो जाती है। साथ ही साथ श्रोताओं, एक ही प्रकार के फसल बड़े क्षेत्र में होने से कीट और रोग तेजी से फैलते हैं, जबकि अंतर्वर्ती जब खेती की जाती है, यानी कि एक खेत में कई प्रकार की फसल लगाई जाती है, तो कीट और रोगों का प्रसार भी जो है, जो की जो बढ़वार है ये भी रुक जाती है, कम हो जाती है। तो निश्चित रूप से अंतर्वर्ती खेती से कीट और रोगों का पर भी काफी हद तक स्वतः नियंत्रण हो जाता है। मुख्य फसल के साथ दलहनी फसल के रूप में मूंग, उड़द या अरहर लगाएं, तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर कर यानी कि वायुमंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन को ये जो पौधे हैं वो अपने जड़ों में इसे सुरक्षित करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है स्वतः, और कहीं ना कहीं रासायनिक उर्वरकों की जो आवश्यकता है वह कम हो जाती है। अंतर्वर्ती खेती करने से खेत लंबे समय तक हरा और ढका रहता है। इससे वर्षा और हवा के कारण मिट्टी के कटाव में भी कमी आती है और भूमि की नमी भी स्वतः बनी रहती है। सूर्य प्रकाश, पानी, पोषक तत्व और श्रम का ज्यादातर उपयोग इसमें हो जाता है स्वतः, और फसलों का इन संसाधनों के साथ समय समय पर और अलग मात्रा में उपयोग होता है, तो कहीं ना कहीं संसाधनों की जो बर्बादी है वो प्राय कम हो जाती है। और श्रोताओं, अंतर्वर्ती खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का भी प्राय कम उपयोग होता है। मिट्टी, पानी और पर्यावरण में भी प्रदूषण में कमी आती है, और कहीं ना कहीं टिकाऊ की कृषि को बढ़ावा मिलता है श्रोताओं। और तो देखा जा श्रोताओं, तो अंतर्वर्ती खेती एक वैज्ञानिक, लाभकारी और टिकाऊ कृषि प्रणाली है। इससे भूमि का बेहतर उपयोग हो जाता है, उत्पादन और आय में वृद्धि होती है, रोग और कीट नियंत्रण में स्वतः, और साथ ही साथ मिट्टी के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरकता, इन सभी चीजों में सुधार होता है। अंतर्वर्ती खेती कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ कम लागत में ज़्यादा लाभ देने का या प्रदान करने का ये काफ़ी प्रभावी माध्यम है। स्थानीय परिस्थिति के अनुसार श्रोताओं, आपकी जहाँ पर भी आपकी खेत हो, भूमि हो, तो वहाँ के जलवायु, वहाँ के वायुमंडलीय, वहाँ के परिस्थिति के अनुसार आप फसल का चयन करें और अंतर्वर्ती खेती को अपनाएं। आप देखेंगे श्रोताओं कि निश्चित रूप से इस कृषि से आपको ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होगा और पर्यावरण के लिए भी ये काफ़ी अनुकूल होगा। तो श्रोताओं, जमीन को, खेत को खाली ना छोड़े, भरपूर फसल लगाए और भरपूर लाभ लें। और अब श्रोताओं, चलते चलते हम आपको बता दें डाल्टनगंज का आज का तापमान। जी हाँ श्रोताओं, डाल्टनगंज का आज का अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता का प्रतिशत 24 दर्ज किया गया।
दोस्तों इसी के साथ

0: वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा गुड्डू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: TLI है ना।
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को दी मंजूरी। देश भर में एआई तकनीक से मिलेगी कानूनी मदद। प्रधानमंत्री के जनसेवा काल के उपलक्ष्य में देवघर गुड्डा को मिली 7 नमो एम्बुलेंस की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के सेमरा में अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय सख्त। उत्तर कुंजी न दिखने की तकनीकी खामी पर जेएसएससी से मांगा जवाब। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में रांची की कॉमर्स छात्रा अमनी केजरीवाल ने रचा इतिहास। शत प्रतिशत अंक हासिल कर बनी नेशनल टॉपर। और 16वीं

0: जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल रांची में संपन्न, 55 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को 255 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। यह पुनर्गठित योजना 31 मार्च 2031 तक 100% केंद्रीय सहायता से सभी राज्यों में लागू रहेगी। इसमें विधि संजीवनी और एआई संचालित न्याय सेतु चैटबॉट जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए 3 करोड़ लाभार्थियों तक कानूनी मदद पहुंचाने का लक्ष्य है। दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आदिवासियों को बड़ी सौगातें मिली हैं। उन्होंने रामगढ़ की स्थानीय समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिया।
1: एक ऐसी सरकार है जो कि गरीब की चिंता करते हुए सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक सर्वांगीण विकास पिछले 12 सालों में जो उन्होंने किया है उन्हीं सब को लेके हम लोग आम नागरिकों तक जा रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं रामगढ़ आया हूँ। यहाँ पे मेरी स्थानीय लोगों से भी मुलाकात हुई है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवघर और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को 7 अत्याधुनिक नमो एम्बुलेंस की सौगात मिली है। स्थानीय सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी शिवधाम से इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। सांसद की पहल पर शुरू की गई इस 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली सेवा का लाभ देवघर, मधुपुर, जरमुंडी, पौड़ियाहाट, गोड्डा और महगामा के लोगों को मिलेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-112-500 जारी किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची जिले के इटके स्थित सेमरा गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने शहीद विलियम प्रदीप तिर्की, प्रभु सहाय तिर्की, महावीर महली और एनएसजी कमांडो अजय भगत के परिजनों तथा वीर माताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बलिदानियों का यह गांव हमारे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने तकनीकी खामी पर जेएसएससी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया। पोर्टल में गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थी उत्तर कुंजी नहीं देख सके थे। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। राज्य में संचालित नशा मुक्ति अभियान के तहत आज धनबाद नगर निगम में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप नगर आयुक्त संदीप अनुराग के नेतृत्व में निगम अधिकारियों और कर्मियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इसके बाद विशाल मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। उप नगर आयुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा।
2: के द्वारा शपथ लिया गया कि अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे जिले को नशा मुक्त बनाना है, अपने देश को नशा के कुप्रभाव से बचाने के लिए हम लोग सब नशा पान को त्याग करेंगे। इसके अलावा भी अन्य अन्य दिनों में भी अलग अलग अंचलों में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलेगा।
0: सरकार ने विशेष परिस्थितियों में स्थायी कर्मचारियों को 1 महीने का अग्रिम वेतन देने का निर्णय लिया है। इस राशि को 2 महीने के भीतर बिना ब्याज के लौटाना होगा। तय समय पर भुगतान न करने पर इसे 12 महीनों में सामान्य ब्याज के साथ किश्तों में चुकाना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल की कॉमर्स स्ट्रीम की छात्रा अवनी केजरीवाल ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। अवनी ने 500 में से पूरे 500 अंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस अभूतपूर्व सफलता से न केवल उनके विद्यालय बल्कि पूरे रांची शहर और झारखंड का नाम देश भर में रोशन हुआ है। जमशेदपुर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के सफल क्रियान्वयन को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों को मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित निवारणपुर में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में जांच तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ते की एक विशेष टीम ने आज घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। एटीएस के अधिकारियों और जवानों ने मौके से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। रांची के आईजी मनोज कौशिक ने इसकी पुष्टि की है।
3: उसमें वो महत्वपूर्ण कांड था, तो महानिदेशक सब पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशानुसार उस केस को हम लोग एटीएस को ट्रांसफर किए हैं और कांड अनुसंधान अंतर्गत है और जो भी उसमें अपर्गत लिंकेजेस है उसपे वर्क किया है।
0: सीबीआई ने धनबाद एसबीआई शाखा के 25 करोड़ रुपए के घोटाले में 20 साल से फरार दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान के तहत आरोपी ब्रिज भूषण प्रसाद को महाराष्ट्र और करतार सिंह को छत्तीसगढ़ से दबोचा गया। वर्ष 2005 में इस मामले में दोनों आरोपी पहचान बदलकर छिपे थे। धनबाद पुलिस ने निरसा क्षेत्र से 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इन आरोपियों का धनबाद और पश्चिम बंगाल में पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।
4: पूछताछ करने पर ये लोग चोरी हुआ मोटरसाइकिल को बेचने के लिए प्रयास कर रहे थे। इन लोगों के पास 5 गाड़ी रिकवरी मिला था और इन लोगों को निशानदेही पर 8 और गाड़ी हमको मिला था और वो भी रिकवरी हुआ है। और जिस साधन यूज करके वो मोटरसाइकिल का चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल का जो लॉक खोल देते हैं, वो भी साधन हमको बरामद हो गया है।
0: तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होने वाली 16वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल आज रांची में संपन्न हुआ। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस ट्रायल में राज्यभर से 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने बताया कि जुलाई में विशेष शिविर के बाद अंतिम 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की जाएगी।
5: जुलाई 28 से लेकर 8 अगस्त तक तमिलनाडु में जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता है हॉकी इंडिया के द्वारा, जिसके लिए आज झारखंड टीम का ट्रायल हो रहा है, जिसमें विभिन्न जिला से कई खिलाड़ी आए हैं। इनका भी हम लोग ट्रायल लेंगे और इनमें से जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उनको 30 खिलाड़ियों का सिलेक्शन करेंगे। इन 30 खिलाड़ियों का 15-20 दिन का कैंप कराएंगे और उसमें से जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को दी मंजूरी। देश भर में एआई तकनीक से मिलेगी कानूनी मदद। प्रधानमंत्री के जन सेवा काल के उपलक्ष्य में देवघर गोड्डा को मिली 7 नमो एम्बुलेंस की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के सेमरा में अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय सख्त। उत्तर कुंजी न दिखने की तकनीकी खामी पर जेएसएससी से मांगा जवाब। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में रांची की कॉमर्स छात्रा अवनी केजरीवाल ने रचा इतिहास। 100% अंक हासिल कर बनी नेशनल टॉपर। और 16वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल रांची में संपन्न। 55 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला को लेकर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। समय कम बचा है, इसलिए देवघर में वरीय अधिकारियों का लगातार भ्रमण जारी है। पर्यटन विभाग के निदेशक नमन प्रियस तकड़ा ने बताया कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हर व्यवस्था समय पर पूरी कर ली जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह देवघर बासुकीनाथ आने में परेशानी न हो।
2: जो हम लोगों ने पिछले बैठकों में ये एक्सपीरियंस किया था, इसको एड्रेस किया जा सके, उनको काफी हद तक एड्रेस किया गया है। कुछ आवंटन वगैरह की जो बातें हैं वो डिस्कस की गई, क्या हम लोग नया और वेंडर कर सकते हैं ताकि हमारे जो श्रद्धालु वो आए और उनको बेहतर जलापन का वो लाभ मिल सके सुरक्षित एवं बिल्कुल सरल तौर पर। और हम लोग आशा करते हैं कि पूर्व के वर्ष में जिस तरह से अच्छा हुआ है और भी बेहतर हो। 2024 श्रावणी मेला वहां पर मेरा ड्रेनेज को हम लोग और बेहतर बनाएंगे। टेंट सिटीज में हम लोग अलग से हेड काउंसिल करेंगे ताकि वहां पे जो भी हम लोग डेली बेसिस पे सुविधा दे सके उसको हम लोग बेटर मैनेज कर सके।
1: इधर देवघर नगर निगम को नई प्रशासक सुलेचना मीना मिल गई है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पेयजल, साफ सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था है। सावनी मेला को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो।
3: नगर निगम का प्राथमिकता उसकी यही रहेगी नगर निगम की कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए और इसमें हम ट्रैकर्स यूज करेंगे। जितनी भी ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पे सफाई करनी यदि नहीं पहुँचते हैं और तो ऐसी समस्याओं को टैकल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको ट्रैक किया जाएगा, उनके ट्रैकर सिस्टम होंगे। एक तो नासी वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में हमने सुना है जो कि काफ़ी ज़रूरी है देवघर के लोगों के लिए, उस पर भी हमारा विशेष फोकस है।
1: नशा मुक्ति को लेकर देवघर में जिला प्रशासन सख्त है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुमानिया और पुलिस अधीक्षक परवीन पुष्कर खुद कमान संभाले हुए हैं। दोनों अधिकारियों ने कहा कि इस बार देवघर को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस योजना पर काम किए जा रहे हैं ताकि देवघर एक नशा मुक्त जिला बनकर उभरे।
4: नार्कोटिक्स का अगर हमें सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं, अरेस्टिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके चलें और एक ये जो जागरूकता अभियान 15 दिनों का है उसमें सभी लोग भाग लें और ये जागरूकता अभियान सभी लेवल्स पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर लेवल पे चलेगा। जागरूकता के साथ साथ साथ में कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी और इन 15 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ड्रग पेडलर, जितने भी ड्रग पेडलर्स ये काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
5: जैसे नशा मुक्ति को लेकर जो जागरूकता है 26 जून को जो इसके लिए अभियान का जो एक दिवस है उससे पहले 2 सप्ताह का एक अभियान चल रहा है सभी स्कूलों में, हॉस्पिटल में और अन्य सार्वजनिक जगहों में, जहां पे सभी बच्चे और सभी युवाओं को ये संदेश दिया जाएगा कि नशा मुक्त होने से देश के विकास में और खुद के जीवन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे।
1: प्रदेश की एकमात्र एम्स अस्पताल में लगातार सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ब्लड बैंक खुल जाने से आम लोगों को अब जीवन दान के रूप में ब्लड बैंक से ब्लड की आवश्यकता पूरी होगी। आशीष कुमार अकम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: बुनियाद। नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज कर ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर। ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई, बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना, तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ, 1800-121-0051, 1800-121-0051, और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002, 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं। किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल, चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआ।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में, हाँ, ये कोर्स जो है ना, न कोविड था न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी, तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया। हाँ, आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन। उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। हाँ, इस विषय में क्या, कहाँ, कैसे हो सकता है, कुछ भी बताएंगे। बहरहाल नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें 9431899002 और 1800121001। डॉक्टर नीरज बताइए। हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: हाँ, ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद,
1: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे हम सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और अस्पतालों में इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूं राजेश, और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ढेर सारे सवाल आए हैं आने वाले सोमवार के दिन, हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121051। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
1: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
0: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
1: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं, ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह सकते हैं कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो ड्यूअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के, और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनका उनसे आप पूछेंगे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। और इस पे हमारे टीचर और हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
0: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1800121051, और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। और अगले एपिसोड में हम बताएंगे एक नया कोर्स आया है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों, सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए।

0: ये फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम सुनते हैं एक ही फिल्म से रामलखन। इस फिल्म के गीतों को पहला बोल है लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अनुराधा पौडवाल के गाए इसी गीत के साथ अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज आइए हम सुनते हैं डॉक्टर सुंदरम श्रीहर से ली गई जो कि रांची के हैं भेंट वार्ता। विषय है अनिंद्रा कारण और निदान।
1: बल्कि भागम भाग जिंदगी में हर तरफ हम तनाव से घिर जाते हैं। हमें चारों ओर सिर्फ अपना काम दिखता है और काम के बोझ के तले हम बहुत चीज़ें भूल जाते हैं और ऐसे में हम भूलते हैं पर्याप्त समय अपने नींद के लिए। सही समय पर हम सो नहीं पाते हैं, सही समय पर हम उठ नहीं पाते हैं और कितना हमें समय सोने के लिए देना चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं। होता क्या है, हम थकान महसूस करते हैं और तनाव से घिर जाते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है हमारा अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस। तो एक व्यक्ति को कितना घंटा सोना चाहिए और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है क्या कारण है इसका और कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, अनिद्रा एक कॉमन बीमारी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। लोग सही से सो नहीं पाते हैं, बहुत लोग गोलियों का सहारा लेते हैं जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए कितना घंटा व्यक्ति को सोना चाहिए?
2: अनिद्रा या इंसोमनिया, इसको हमारे मेडिकल भाषा में या अंग्रेजी में कहते हैं इंसोमनिया, नींद ना आना, इसमें इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको उनीदापन कहते हैं या निंद्रा लोप भी कहते हैं या निंद्रा अभाव भी कहते हैं। ये सारे नींद नहीं आने के अलग अलग नाम हैं। हम सब जानते हैं अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है शांतिपूर्ण नींद ही स्वास्थ्य का आधार है। हम लोग तकनीकी बहुत तरक्की कर गए हैं, अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये तकनीकी तरक्की किस कारण हुई? अपना स्वास्थ्य और नींद को गंवाकर। तो ऐसी तरक्की क्या हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं। किसी कारण भी अपना स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने पूछा कितने घंटे सोना चाहिए, जब शिशु या बच्चा जन्म लेता है तो देखते हैं मैक्सिमम समय वो सोए रहता है 18 से 20 घंटा, सिर्फ खाने के लिए थोड़ा देर के लिए पीने के लिए उठता है फिर सो जाता है। तो उन लोग 18 से 20 घंटे सोते हैं। क्यों सोते हैं? उस सोने के दौरान में उनका मानसिक विकास होता है। तो हमारे यंग लोगों में, बड़े लोगों में सोना कम से कम 6 से 10 घंटे सोना जरूरी है। कहते हैं 8 से 10 घंटे सोए तो आपका शरीर का संपूर्ण विकास होगा, शरीर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी और शरीर अपने हीलिंग की ओर, अच्छे की ओर, स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेगा। किसी किसी लोगों में देखा जाता है 6-7 घंटे भी सो के स्वस्थ रहते हैं। ये इंडिविजुअल वेरिएशन है, कई लोगों को 8 से 10 घंटे, तो ऑन एन एवरेज कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए या कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो भरपूर नींद लेना ही चाहिए, वरना आप बहुत सारे मानसिक रोगों के शिकार आगे चल के हो सकते हैं।
1: सही से नींद हम नहीं निकाल पाते हैं, सही से हम सो नहीं पाते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है?
2: पहले हमको जानना है कि नींद नहीं आने के मरीज कैसे आपको लक्षण लेके आएंगे। कुछ लोग पढ़ें कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे नींद शुरू में नहीं आती लेकिन एक बार सो जाता हूँ तो ठीक से आती है। कई लोग कहता हूँ सो तो जाता हूँ सर लेकिन रात में बीच में उठ पाता हूँ, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं नींद को। कई लोग सो भी जाते हैं, कुछ हद तक मेंटेन करते हैं लेकिन फिर सुबह उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो नींद नहीं आने के ऑनसेट मेंटेनेंस और तुरंत उठने की बीमारी होती है। कई लोग इसके बाद कहते हैं सर मैं पूरा सोता हूँ फिर भी हमको थकान महसूस होती है। ये सब इंसोमनिया के ही लक्षण में आते हैं जो मरीज आके शिकायत करता है। मरीज शिकायत करने के बाद अगर ये नहीं अगर इसका ध्यान दिया जाए तो ऐसे मरीज एंग्जाइटी और डिप्रेशन और तरह तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इन सब के निदान के लिए आपको चिकित्सक परामर्श लेने की अत्यंत आवश्यकता है।
1: कुछ व्यक्ति स्वतः ही दवा लेकर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, वो कितना हद तक जायज़ है?
2: ओवर द काउंटर मेडिसिन सरासर गलत है। खासकर नींद की मेडिसिन ना लें। अच्छे फार्मासिस्ट, अच्छे दुकान वाले कभी भी किसी मरीज को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद के दवा नहीं देती है। ऐसा नहीं मेट्रो में, ऐसा अपने झारखंड में भी कई दुकान पे जाइए, आप मांगिए, आपको नींद की दवा नहीं देगी। नींद की दवा लेना क्यों जरूरी है? अगर कोई आदमी प्रॉपर तरीके से सोता नहीं है तो कार्य क्षमता पे असर पड़ता है। तो कभी कभी किसी को शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, शॉर्ट थोड़े दिन के लिए अनिंद्रा, जो दिनों से दो तीन हफ्तों तक रहता है, दीर्घकालीन अनिंद्रा जो क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं, जो महीनों सालों भर रहता है। तो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया जो साइकिल चेंजेस, किसी का ड्यूटी शिफ्ट हो गया, प्लेन से एक जगह से इधर गए, जेट लैग हो गया, जिसमें शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होते, कुछ इन्फेक्शन के कारण हो गया, कभी किसी को चोट लग गई, पेन के कारण हो गया, तो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया उपचार करने से स्वतः दूर हो जाती है। लेकिन क्रोनिक ये जो दीर्घकालीन इंसोम्निया होती है, उसमें लगातार अगर वर्क शिफ्ट हो गया, उसमें कभी अच्छी नींद आ रही, कभी ख़राब नींद आ रही, कभी अच्छी, तो साल भर उसको नींद की साइकिल डिस्टर्ब रहती है। इसको वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ स्लीप कहते हैं, जिसके मल्टीपल कारण है, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्यतः नेजल एलर्जी, साइनोसाइटिस, अगर नाक का इन्फेक्शन रहा, जीआई रिफ्लेक्सेस हुए, हाइपरथायरॉइड के मरीज को, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मरीज को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पार्किंसनी, ज्वाइंट प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, सांस के मरीज को, और कुछ लोगों को मेंटल डिसऑर्डर में भी नींद की, क्रोनिक नींद की प्रॉब्लम होती है। तो नींद की प्रॉब्लम में ओवर द काउंटर दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से मिलें, वो आपको तरह तरह के तरीके बताएंगे जिससे आप प्रॉपर नींद ले सकें। सर्वप्रथम हम नींद लेने जाते हैं तो हम शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो अगर आप एक्सरसाइज या शारीरिक परिश्रम करेंगे तो आपको सही नींद आएगी। और एक और नया कंसेप्ट अभी डेवलप किया है कि पुअर स्लीप हाइजीन, मतलब सोने वाले जगह को हम स्लीप के अनुसार लाइट नहीं रखते हैं, ज़्यादा लाइट रखते हैं, शोर शराबा रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हैं, टीवी चलते रहेगा, ऐसे माहौल में नींद नहीं आएगा। कई लोग सोने से पहले नहा लेते हैं तब भी नींद नहीं आएगा, चाय कॉफ़ी धूम्रपान का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब भी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। तो इन सब से हम बचें। कभी कभी रात में अगर 20 मिनट से ज़्यादा नींद टूट गया, उठ गए, तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, दूसरे चीज़ में लगाएं, कुछ पढ़ने लगे, नहीं लगे, कुछ क्रिएटिव वर्क करने लगे, फिर धीरे धीरे थोड़े देर बाद आपको नींद स्वतः आ जाएगी। तो ये सब बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंज करके हम अपने एंग्जाइटी को और नींद की समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, तनाव का नींद से गहरा संबंध है। कहते हैं किसी व्यक्ति को तनाव हो गया या हम तनाव से घिर जाते हैं तो रातों की नींद हराम हो जाती है। तो ऐसे समय व्यक्ति क्या करे, किस तरह के उपाय अपनाए, क्या क्या जतन करे वो कि उसको सही से नींद आए?
2: आपने सही समय पूछा। आज की समस्या तनाव और स्ट्रेस की समस्या है। दिन चूहे की दौड़ है, हम लोग 99 के चक्कर में भागे जा रहे हैं। ये चक्कर कब खत्म होगा पता नहीं, यही तनाव को जन्म देता है। तो अपने लाइफ का उद्देश्य और कार्य को निश्चित करें और बहुत ज़्यादा आगे पीछे दौड़ें नहीं, और योगा और एक्सरसाइज पर ध्यान दें, आउटडोर एक्टिविटीज, मतलब कहने का है शारीरिक परिश्रम करें, जिससे कि आपको थकान होगी और खुद नींद आएगी। और सोने का जगह जैसे मैं बताया, शांत और आरामदायक वातावरण रखें जिससे नींद आए, और जो भी चीज़ आपको एंग्जाइटी करती है उससे दूर भागें, उससे बचें, उसमें इन्वॉल्व नहीं हों। अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो चिकित्सक से परामर्श रह के उसके अनुरूप हर को अलग अलग तरह की दवाई दी जाती है, जो आप दवा का सेवन कुछ दिनों तक कम मात्रा, कम डोजेज में आप प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, रात्रि के भोजन के कितने समय उपरांत व्यक्ति को शयन कक्ष में चला जाना चाहिए?
2: रात्रि के भोजन के 1 से 2 घंटे के भीतर आपको शयन कक्ष में चला जाए। तुरंत इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो फूड मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। उसके आधे घंटे बाद आपने सोने के बेड पे चले जाए, जो बेड आरामदायक रहे। ऐसा नहीं रही कि बेड गंदा रहे, सामने टीवी चलता रहे, लाइट जलता रहे, कम वातावरण में, जिसको जैसा सुचार, किसी को कम लाइट रहती, किसी को बिल्कुल लाइट नहीं पसंद नहीं रहती है, उस वातावरण बना के, जिसको स्लीप हाइजीन कहते हैं, मेंटेन करके आप धीरे धीरे सो सकते हैं। एक अंग्रेजी में लाइन है, इफ़ यू कैनॉट स्लीप यू कैनॉट हील। अगर आप सोएंगे नहीं तो स्वस्थ और हील नहीं होंगे, इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को ध्यान दें, डाइट को ध्यान दें, गलत आदतों से बचें और सही नींद लें, और आप सही लंबी आयु को प्राप्त करेंगे अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे।
1: हम तनाव से दूर रहें और सही वक्त पर हम यदि सो जाते हैं और पर्याप्त समय यदि हम अपनी नींद को देते हैं तो हमारे कार्य क्षमता में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम अधिक समय तक काम कर पाएंगे और जो भी हम कार्य करेंगे वो दक्षतापूर्वक हम कर पाएंगे।
2: बिल्कुल सही।
1: डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म के गीत से। आवाज़ पलक मुच्छल की है, गीत के बोल इरशाद कामिल के हैं, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अगला गाना हमने लिया है फिल्म बागी से, आवाज़ें अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की है, गीत केवल समीर के हैं, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अब आइए सुनते हैं बादल इस फिल्म के गीत से सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत केवल समीर के हैं और इसे सुरों में ढाला है अनु मलिक ने।

बाजीगर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गौहर कानपुरी के गीत के बोल थे और संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। अब आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में समीर की रचना, आवाज़ें सुदेश भोसले और अलका याग्निक की है। फिल्म का नाम है

भगवान फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाज़ों में, समीर के बोल थे, संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव ने। अब आइए सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम को फिल्म दीवाना में। समीर के बोल हैं और इसे संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बाराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के

0: विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच

के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: द्रौपदी मुर्मू नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में वफात पाने वाले अफराद के तई अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने महलुकीन के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और ये एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई स्कीमें मुल्क को अव्वलियत देने के मकसद के साथ शुरू की गईं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना यूबीटी ग्रुप के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट की उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने मेंबरान पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहब वागचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश निम्बलकर की शिवसेना में शमूलियत का खैर मकदम किया। जनाब शिंदे ने कहा कि इन 6 मेंबरान पार्लियामेंट की शमूलियत उस तहरीक के दूसरे मरहले की अलामत है जिसका आगाज जून 2022 में उस वक्त हुआ था जब शिवसेना के 40 मेंबरान असेंबली ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि इस बगावत का मकसद शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के नजरियात को महफूज रखना और पार्टी के हिंदुत्व के उसूलों का तहफ्फुज करना था।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई आलात बरामद कर रहा है और वो इस शोबे में खुद कफील बनता जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो भारतीय शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक बाख्तियार भारत की तामीर के तई पुरअज़्म है और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत इंसानियत को रास्ता दिखाती रही है। उन्होंने भारतीय संतों की सताइश की कि उन्होंने शहरियों के माबैन कौमियत के जज्बात को बेदार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल की वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अमीर बारम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजारत दिफा ने बताया कि जनाब बारम ने जनाब सिंह को भारत इसराइल खसूसी कलीदी शराकत दारी के मजमू दायरा कार के तहत भारत इसराइल दिफाई तआवुन को वसत देने के तई इसराइल के अजम से वाकिफ कराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उलान बाटा में आज मंगोलिया के अपने हम मनसब बदसित्सक बतमुंक से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस तबादला ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी कुव्वत और मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती प्रोजेक्टों, सलाहियत साजी, सकाफत, तालीम, सिक्योरिटी और कसीर मुल्की फोरमों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफैन ने कानकनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और जरई प्रोसेसिंग के शोबों में दस्तियाब मौकों के बारे में भी बातचीत की। बीजेपी की क्यादत वाली मगरबी बंगाल सरकार ने आज 2026-27 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में समाजी फलाह बहबूद, बुनियादी ढांचे की तरक्की और रोजगार पैदा करने पर खास जोर दिया गया है। बजट में खवातीन पर मरकूज कई इकदाम का ऐलान भी किया गया। 6,070 करोड़ रुपए के खसारे वाला बजट पेश करते हुए वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने इसे एक तरक्की याफ्ता बंगाल बनाने के लिए एक रोड मैप करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत का बकाया कर्ज 8 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है, इसमें माली नज्म व जब्त को अव्वलीन तरजीह दी गई है। भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों की हिफाजत और रेलवे के कामकाज की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की खातिर मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर रूट पर ट्रेन की हिफाजत के खुद

का निजाम कवच को नस्ब करने की मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत के मुताबिक ये प्रोजेक्ट मशरकी साहिली रेलवे के 6 अहम रेलवे सेक्शन पर मुश्तमिल है, जिनमें बघवापाल बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बालनगीर, गुन्नूपुर नौपाड़ा, लांजीगढ़ जूनागढ़ और बबीली सलूर शामिल हैं। इन रास्तों पर कवच निज़ाम की तंसीब से रेलवे के कामकाज के हिफाजती मेयार में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि ये खुदकार निज़ाम ट्रेन की हिफाजत और ट्रेनों की टक्कर से बचाव के लिए जदीद सलाहियतें फराहम करता है। वजारत ने मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट से उड़ीसा और मशरकी साहिली रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुसाफिर ट्रेनों और मालगाड़ियों दोनों किस्म की ट्रेन खिदमात को फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के उस जारी मिशन को भी तकवीत देगा, जिसका मकसद ज़्यादा मसरूफ़ और कलीदी अहमियत के हामिल रेलवे रास्ते पर कवच निजाम की कवरेज की तौसी करना है। ये आकाशवाणी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टर्मर ने अपने ओहदे से और लेबर पार्टी के लीडर के तौर पर भी इस्तीफा दे दिया है। इस तरह खुद अपनी ही पार्टी के बढ़ते हुए दबाव के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पर उनकी मुद्दत कार का इख्तिताम हो गया। अपने इस्तीफे के मुतालिक बयान देते हुए जनाब स्टैमर ने 2 साल कबल डाउनिंग स्ट्रीट पर अपनी आमद को अपनी जिंदगी का फख्र से भरपूर एक लम्हा करार दिया और कहा कि उन्होंने सियासत में लाखों अफराद की जिंदगी को तब्दील करने के मकसद से कदम रखा था। इधर सीनियर सियासतदान एंडी बर्नहम ने केर स्टार्मर की जगह लेबर पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब होने की अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के अगले ओहदेदार के तायुन के लिए दौड़ अगले माह शुरू होगी। लेबर पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 9 जुलाई से नामजदगियां कबूल करना शुरू करने का ऐलान किया है। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने कल रैस लेफन सनती शहर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में कई लोग जख्मी हो गए और कुछ अफराद लापता हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सिफारतखाने ने कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में कतर की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। किसी भी तरह की मदद और पूछताछ के लिए सिफारतखाने से हेल्पलाइन नंबर +97455564752 या +97455384683 और ईमेल cons.doha@mea.gov.in पर राबता किया जा सकता है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोज़ा मीटिंग आज नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इसमें ब्रिक्स के 11 मेंबर मुल्कों के सिक्योरिटी सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इनमें भारत, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। मीटिंग के दौरान होने वाली बातचीत में कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेज़ी के साथ बदलती हुई नौइयत के अलावा उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल पर भी गौर खौस किया जा रहा है। इस मीटिंग के मौके पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी गदीर निज़ामीपुर से मुलाकात की। तरफेन ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के तहत तआवुन और भारत ईरान दोतरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। निशानेबाजी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत ने मजीद 4 तमगे जीतकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है और वो तमगे के लिहाज से सरे फहरिस्त है। 9 उम्र निशानेबाज प्रीतम केंद्रे ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल जूनियर मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया। इस तरह उन्होंने चैंपियनशिप में भारत के लिए 5वां सोने का तमगा जीता। ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल टीम मुकाबले में अंजलि महेंद्र भागवत, परीक्षा गुप्ता और निथिला आईवी डार्लिंग प्रवीण क्रिस्टोफर पर मुश्तमिल टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। भारत ने मर्दों के 25 मीटर पिस्टल जूनियर टीम मुकाबले में भी कांसे का तमगा हासिल किया। अभिनव चौधरी, राजचंद्र और जतिन पर मुश्तमिल टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसे का तमगा जीता। इससे पहले अनवी राठौर ने ख्वातीन के 10 मीटर एयर राइफल जूनियर मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। इस तरह भारत के तमगों की मजमू तादाद अब 12 हो गई है। इसमें सोने के 5, चांदी का 1 और कांसे के
کے 6 تمغے شامل ہیں۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا۔ رات دیر گئے 2:30 بجے فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا۔ اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।
1: पूछो जरा है कैसी जिंदगी।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

इस बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।
2: मस्ताना अल्लैला।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं, ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी। मस्ताना अल्ले।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं प्यार का मंदिर इस फिल्म के गीत से। आवाज़ें किशोर कुमार और साथियों की है, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: और उदित नारायण की आवाज़ों में मजरी सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। अब आइए सुनते हैं दिलवाले। इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के बोल हैं और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।
1: पियानो कौन बजा रहा है? तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा।
2: हमारे बीच कुछ नहीं रहा?
1: क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का?
2: तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुँचेगा।

अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में घायल फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और पंकज उदास की, अनजान के बोल हैं, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

घातक फिल्म का गीत भी आपने सुना सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे संगीत दिया था। अब आइए सुनते हैं जानवर इस फिल्म से। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण और साथियों की है, समीर के बोल हैं, संगीत आनंद मिलिंद का।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं बिजू शाह के संगीत निर्देशन में इंदिवर की रचना, आवाजें पंकज उदास और साधना सरगम की है। फिल्म का नाम है मोहरा।

पंकज उदास और साधना सरगम के गाए इसी गीत फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ही डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज़ रेड बाय अभिनीत शुक्ला।